0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं, आइए आप

नमस्कार, पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित कर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत है सुप्रभात में। और इससे पहले कि हम आज के सफर शुरू करें, हम आपको बता दें कि कुछ ही पलों में हम एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनने वाले हैं और इसके बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। और उससे पहले यानी कि अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, अपना प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे, उसके बाद

तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और आने वाली विपत्तियों से भी बचाएगा।

यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य प्रभु के वचन पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन प्रसन्नता और आनंद में गुजरता है, क्योंकि शांति और मुक्ति देने वाला वही पिता परमेश्वर है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए विश्वास करना और उस पर बने रहना जरूरी है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9693

सारी बातें कह सके और आप उसकी सारी बातें सुन भी सके। आपकी बातों को वो ध्यान से सुने, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बहुत ही समझदारी वाली हो या बिना सर पैर की हो, कहीं पे फंस गए हैं हम तो उस बात को सुलझाए। और अगर कहीं पे कोई मुश्किल चीज़ आ गई हमारे सामने तो उस चीज़ को भी, उस कठिनाई को भी वो हराए। अब ऐसे में दोस्ती तो ज़रूरी है, और पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारा दोस्त नहीं होता, लेकिन हाँ वो हमारा ऐसी समय पर उस जगह पे मदद कर देता है जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता है, या फिर जहाँ पर आप किसी के पास जाएं या किसी को मदद के लिए बुलाएं उससे पहले वो फरिश्ता बनकर आ जाता है।

लेकिन ढेर सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार हम आपके मैसेजेस नहीं ले पाते क्योंकि उस प्रोग्राम का वो फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन आप हमें मेल ज़रूर कर सकते हैं, आप हमें मेल करें हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है feedback@fmrainbow@gmail.com, feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको हमें बात मेल करना है, अपनी बात हमसे शेयर करनी, जो भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं वो आप हमें कहें, और अपने आसपास ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको कठिन समय में आपकी मदद करें और आपके आपको सहयोग दें, ना कि कठिन समय में आपके सामने से गायब हो जाए। ऐसे दोस्त ज़रूर बनाएं। और अभी फ़िलहाल आप एंजॉय करें कैलाश खेर की आवाज़ में बेहद बेहद खूबसूरत ट्रैक आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ, और आपको किसी से पूछना ना पड़े इसलिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप दिन भर कौन कौन से कार्यक्रम है जो एफएम रेनबो पर आप सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में 7:02 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर ऋचा वर्मा के साथ, और 8:02 पर मैं ही आऊंगी आपसे मिलने गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के दूसरे घंटे में। दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर ऋचा आपसे मिलने आने वाली है 9:02 पर, और 10:02 पर आपके साथ रहेंगी निहारिका वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर में।

विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने का फैसला लिया है और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर यह राहत लागू नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्यवाही के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में हुए विस्फोट में करीब 18 खनिकों की मौत और 24 अन्य खदान के अंदर फंसे हैं। राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीत लिया है।

और जहाँ अंत होता है वहाँ कहीं ना कहीं नई शुरुआत भी होती है, और यही हमें हर एक दिन सिखाता भी है। देखिए ना कि जब रात ढलती है दिन निकलता है, और फिर जब दिन ढल जाता है फिर से रात आ जाती है। जीवन बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, और यही पूरी कहानी जीवन की चलती रहती है। मैं हूँ ऋचा आपके साथ, और आज के कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियों का पिटारा मेरे पास आपके लिए है। लेकिन आज के इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों रखता है एक खास जगह, इस बात से हम शुरू करेंगे। तो आज एक ऐसा दिन है जो शायद हम सभी के लिए बहुत याद रखने वाला दिन है, और हम सभी को इस दिन के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए। किसी का किसका तो 1924 की बात है, माफ कीजिए 1940 की बात है लगभग। और 1940 में भारत में कि एक ऐसी घटना हुई थी कुछ समय पहले, जिस घटना ने पूरे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है ना उसे हिला के रख दिया था। हुआ

एक बार भी नहीं सोचा कि वो तो रहेंगे नहीं, भले ही देश आजाद हो जाएगा तो भला उनके जान देने से क्या फायदा है। वे बस हमारे लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए न केवल लड़े बल्कि अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया मुस्कुराते हुए। और न जाने ऐसी कितनी कहानियां, कितनी सारी कथाएं हैं जो बताती हैं कि जब जब इन स्वतंत्रता सेनानियों की प्राणों पर बनाई, तब इनके चेहरे पर केवल गर्व के भाव थे, एक बार भी कोई पछतावा या कोई दुख नहीं था। और इसी बात से आधी हार तो ब्रिटिशर्स की यही हो जाती थी। खैर, एक और ऐसी घटना है जो माइलस्टोन बनी और जिसकी वजह से आप और हम भी आज जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी घटना की जब 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने भारत में रेडियो सेवा की शुरुआत की। इसका मतलब ये है कि 1924 में मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है, इसके प्रशासन ने लोगों तक समाचार, संगीत और अन्य कार्यक्रमों को पहचानने के लिए रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, मनोरंजन देंगे, एजुकेट करेंगे। लेकिन उस समय रेडियो का प्रसारण इतना बड़ा नहीं था और केवल सीमित क्षेत्र तक ही रेडियो पहुंच पाता था। 1936 में आगे जाकर ऑल इंडिया रेडियो, जिसके जिसके माध्यम से आज आप और हम जुड़े हुए हैं, इसकी भी स्थापना हुई। और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, यू नो दैट कि

अपनी बीमारी से परेशान हो और ट्यून इन करें और रेडियो डॉक्टर का वो कार्यक्रम आ जाए, आपको कुछ सलाह मिल जाए, या अपने करियर को लेकर परेशान हो और अल्फा जैन पर कुछ सुन लें तो दिन बन जाता है। कुछ ऐसा ही करते हैं हम जब आपके लिए रेडियो हेल्पलाइन लेकर आते हैं, तो कोशिश रहती है कि आपकी मदद हो। एक साफ नीयत के साथ कोशिश करते हैं कि आप तक मनोरंजन तो पहुंचे ही, साथ ही आपको एजुकेट कर पाएं, आपको इन्फॉर्म भी कर पाएं। तो जब कहते हैं ना, जब नीयत साफ होती है तो खुद ब खुद दिल का रिश्ता बन ही जाता है, और इसीलिए हमारी टैगलाइन भी है दिल से दिल तक। तो दिल से दिल तक पहुंचते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ। जरा सोच कर देखिए, सुबह का इतना खूबसूरत सा मौसम है, जरा बाहर देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, एंड जस्ट जस्ट

0: जैम तो नहीं है। वहां पहुंचने के बाद आप ज्यादातर मेल से अपने फोन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, और फिर उसके बाद इवन आने के बाद भी जब मेल्स वगैरह होते हैं वो भी आप अपने फोन पर एक्सेस करते हैं। कभी परेशान होते हैं तो इस फोन से ही अपने दोस्तों को फोन कर लेते हैं। इस फोन में जिसमें कैमरा है, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें न जाने कितने सोशल मीडिया एप्स है जो आपको एकदम टेंशन फ्री कर देते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, आपके आपको हमेशा कनेक्ट रखते हैं टू द वर्ल्ड। और ये जो सेलुलर फोन है, ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ पे है ना, ये जरा सोच के देखिए कि इसके बिना मैंने देखा है कई लोग तो अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। बल्कि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए भी इस फोन की जरूरत पड़ती है। और आई एम श्योर आप भी किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर जानते होंगे जो अपने फोन के बिना एक पल नहीं रह सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से पहले ये बात पॉसिबल थी ही नहीं। माफ कीजिए, 1995 से पहले ना कोई इस तरह की जिंदगी जैसी हम आज जी रहे हैं शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम एक ऐसी चीज का इन्वेंशन कर लेंगे, एक ऐसी चीज आएगी भारत में जिसके बाद लोगों की 100% डिपेंडेंसी उस डिवाइस पर हो जाएगी, और वो है ये मोबाइल फोन। 1995 की बात है जब भारत में ये मोबाइल की सेवा की शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन से। और इसी दिन भारत की पहली मोबाइल कॉल भी की गई थी, और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। फिर लोग एक नए जब नए लोगों से मिलते हैं तो उनके नाम, उनकी पसंद के अलावा वो कैसे हैं ये जानने के बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद अगर उनसे मिलना जुलना अच्छा लगा तो पीछे से पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर?
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच। यार

0: के खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित खेलों में अपनी मेहनत और शिद्दत से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। नमस्कार, ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 8वें दिन के अपडेट्स के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का आकाशवाणी में स्वागत करते हैं।
1: खेलों का 8वां दिन भारत 5 स्पर्धाओं में था। भारोत्तोलन की स्पर्धाएं कल समाप्त हो गईं। भारोत्तोलकों ने भारत को कई पदक दिलाए, लेकिन खेल प्रेमियों की इच्छाएं तो हमेशा और ज्यादा की ही रहे।

चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदक धारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण, लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे। करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी लय की खोज में दिखते रह रहे हैं। यहां इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अर्शद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन

कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथी सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15:08.56 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलॉन में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जम्प स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये प्रदर्शन जारी रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय

0: के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
1: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड शैल बी representing India. Then there will be women's 48 kilogram event quarterfinals in which Ashmita Day will be representing India. Then there will be women's 57 kilogram quarterfinal event in which Yamini Maurya shall be representing India.
0: Athletics में decathlon की स्पर्धाएं जारी रहेंगी। तेजस्विन शंकर पदक की होड़ में बाकी बची 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे। मिक्स 4x400 रिले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे।
2: In track cycling, there will be men's 4,000 meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekha shall be representing India. There will be men's Keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and James Singh will be representing India. In lawn ball, the men's pair sectional play event shall be happening in which Navneet Singh and Dinesh Kumar will be representing India. There will be women's single sectional play in which Nayanmoni Sekia shall be representing India.
3: बहुत प्रैक्टिस किया है, 6 घंटा कंपलसरी है, कभी ज्यादा भी होता है। अभी इस मुकाम में पहुंचा है कि ताकि हम लोग इंडिया के लिए कुछ कर सकें।

वन, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, न जाने ऐसे कितने उपन्यास हैं जिनमें से अगर आपने एक भी पढ़ा है तो आप इनकी इनकी जो लेखन शैली है उसे आप समझ सकते हैं। अगर कहानियों की बात करूं तो ईदगाह, पूस की रात, कफन, दो बैलों की कथा, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आपकी और हमारी कहानी कहती है। इतने प्रसिद्ध कथन इनके हैं जो कहते हैं कि साहित्य दरअसल एक समाज का दर्पण ही है। मनुष्य क्रोध से, प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। साथ ही इनका ये कहना कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है मेहनत और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हमें बड़ी प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान से जीना सिखाते हैं इनके कोच सर। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं है वह जीवन में कभी भी महान नहीं बन सकता। न जाने कि ऐसी कितनी सारी कोटेशंस आपको मिलेंगी जो आपके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर देंगी। और इसके साथ ही एक और लेखिका हैं जिनका आज जन्मदिन है और मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इनके बिना

भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों को पूरी तरह से निरस्त्रीकरण करने के लिए सहमति बनने की घोषणा की है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केरल में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। मछलियों के प्रजनन समय को देखते हुए मशीनों से मछली पकड़ने पर 52 दिन का ये वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया था। गुजरात के अनेक भागों में अगले

बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ बातें जो आपके साथ ऋचा ने शेयर की, कुछ बातें मेरे पास ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तब अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बने रहना है आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर यूं ही।

बहुत जरूरी बात मैं आप सभी के साथ साझा कर दूं। आज 31 जुलाई है और आज लास्ट डेट है उस चीज के आवेदन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें आज अंतिम तिथि है। तो आप जरूर जाएं इनके वेबसाइट पर, जो है awards.gov.in, यहां

अगर आपको बहुत अच्छी लगती है मेट्रो सर्विस, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की लाइफलाइन है मेट्रो सर्विस, तो आप उन्हें बताएं। अगर कोई बात इसमें खटकती है आपको, तो आप जरूर इस अवसर का फायदा लें और आप अपनी बात दिल्ली मेट्रो को बताएं। और यहाँ पर आपको जाना होगा उनकी वेबसाइट पर जो है www.delhimetrorail.com। वहां पर जाएं, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव दें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद

आएंगी। इसके साथ ही मैं आपके बता दूं, बारिश देखकर तो हमारा दिल खुशी से झूम उठता है, मन मयूर सा नाच उठता है, यानी कि छम छम छम ऐसे हार्ट बीट आपकी बजती है, लेकिन दिल हमारा तब भी खुश हो जाता है जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। और मैं बात कर रही हूँ जनपद की, जहाँ पर सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में 7 अगस्त तक वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, हस्तशिल्प और हस्तकरघा से बनी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं। इन सब को देख के आप खुश हो सकते हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं, आप जितने भी कलाकार और बुनकर वहाँ पर हैं उन सबकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है किसी भी कलाकार को, आर्टिस्ट को, जब आप उनकी कला की तारीफ उनके सामने करते हैं। अच्छा, इस ट्रैक में जो एक्टर्स हैं उन्होंने तो अपनी तारीफ अपने आप कर दी, लेकिन कई लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, उनकी तारीफ आप ही करेंगे, और इसलिए आपका जाना वहां पर बहुत जरूरी है। तो आप जा सकते हैं 7 अगस्त तक, आखिरी तिथि है, और सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रदर्शनी रोज खुली रहेगी। तो आप समय निकालें, वहां पर जाएं और वहां पे ये सारी चीजें एंजॉय करें, देखें, निहारें और सराहें। आपकी सराहना किसी के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकती है, किसी का दिन बना सकती है, इस बात को आप याद रखें। और यूं ही हमारे साथ बने रहे, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में रेणु भट्टे आपके साथ।

अब आपको बता देते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गई है, क्योंकि अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के अंतिम चरण में हमारी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। 31 जुलाई यानी कि आज शिविर में वो भाग लेने वाली है, अभ्यास शिविर है वहां पर, और कल जर्मनी के खिलाफ अभ्यास मैच वो खेलने वाली है। इसके बाद वो 2 अगस्त को नीदरलैंड्स के आम्स्टरडैम में रवाना होंगी। तो अपनी हम टीम को ऑल द वेरी बेस्ट कहते हैं।

भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा काली रामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीत लिया है। अरबेजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत ने रजत पदक जीत लिया है, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

लगते थे। उनकी मधुर धीमी सी आवाज़ और इतना खूबसूरत वो गाते थे ना। और आपको बता दूं कि आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। 31 जुलाई का वो दिन था जब भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन था, क्योंकि एक ऐसे कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे जिनकी आवाज़ के हम सब दीवाने हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में हर एक

व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक है ना। आई होप कि आपने इस गाने को बहुत ही इंजॉय किया होगा। और अब हम लौटते हैं नए गानों की तरफ, और एक गाना प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए शिल्पा राव की मखमली सी आवाज में। इस गाने को कीजिए एंजॉय और बने रहिए रिचा के साथ प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नहीं पुराने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

एन आइकॉनिक ट्रैक उड़े जब जब जुल्फे तेरी फ्रॉम द 1957 फिल्म नया दौर मीनिंग न्यू एरा. So this film came about at a time when our country was also signaling in a new era, and it was

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए एक

0: सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।

व्यक्त होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हैं। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी

नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुने हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह एक कार्यक्रम में। और आपको जिस बेसब्री के साथ इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई आरजे ये बताने के लिए होता है कि भाई अब क्या कुछ खास होने वाला है और कैसे आप अपने वीकेंड को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं आपका इस पसंदीदा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। कहते हैं ना कि जहां हर सफर शुरू होता है कहानी से,

भाई साहब फिल्में कोई भी देखे लेकिन कुछ फिल्में हैं जो दिल में उतर जाती हैं और जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और अपनी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे कितनी भी आती रहे जाती रहे लेकिन वो किरदार नहीं बदलते, उनके जो गुण हैं नहीं बदलते और अगर हम उन्हें आत्मसात कर लेते हैं तो फिर कहने ही क्या, पूरी जिंदगी संवर जाती है और लोग फिर हमें झुक कर देखते हैं नज़रों से, हमें सम्मान देने, मतलब झुकने का मतलब सम्मान देने से है। और ऐसी ही कुछ फिल्में हैं जो हमारे जीवन में हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बनी रहती हैं। तो आज उसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारा है, लेकिन पहले आप सुन लें क्योंकि हिंदी सिने जगत की जब भी बात आती है तो एक बार फिर धमाल मचाने आ रही है प्रभु श्री राम को लेकर बनी फिल्म रामायण, है ना। हमेशा बचपन से हम इसे देखते आए हैं और हर बार किरदार कोई हो लेकिन हर किरदार में हमें प्रभु श्री राम ही नजर आते हैं। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो नई फिल्म आ रही है जिसमें हमारे सनी देओल साहब को श्री हनुमान जी के किरदार में ऐसा कहा जा रहा है कि वो आएंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं, उसी फिल्म से जुड़ा हुआ है कि इस फिल्म में प्रभु श्री राम की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई है। उस अभिनेता का आपको नाम बताना है और अगर आपने सबसे पहले हमारा नाम बता दिया उस किरदार का तो फिर आप बनेंगे हमारे आज के सरदार। तो हमारा तो यही स्टाइल है भाई कि सवाल पूछ लेते हैं

है और उसका असली जवाब क्या है। तो चलिए, हम तो जवाब का इंतजार कर ही रहे हो, आपको देना है वो जवाब, हम तक पहुंचना है, और जैसे भी हो भाई साहब, हमें तो आपका इंतजार रहता है। ऐसी ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त था जब इंतजार रहता था कुछ ऐसी आवाजों का जिनके गीत जो है आज भी यानी वर्तमान में भी हमारे लबों पर गूंजते रहते हैं, हमारे जहन में बसे हुए रहते हैं। और कहते हैं कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं, और वो आवाज़ों को हम कभी नहीं भूलते हैं, है ना। तो भाई साहब, हम भी ये कहेंगे कि कुछ आवाज़ें हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। ऐसी एक जादुई आवाज़ थी हिंदी सिने जगत के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की, है ना। उनकी याद में गीत सुनते हैं, फिर बताते हैं कि हम क्यों बात कर रहे हैं। जब भी सुनिए ये जो गीत है ना, दिलों में उतरता है, कुछ कह जाता है, कुछ एहसास करा जाता है, और हम खो जाते हैं अपनी पुरानी यादों में।

तो भाई इसी वादे को लेकर रवि साहब को हम याद करते हैं, क्योंकि हमने भी उनसे एक वादा किया था जब उन्होंने इतने प्यारे गीत हमें दिए कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन संघर्ष संघर्ष ही जो संघर्ष की तपिश होती है वही हमें यहां तक पहुंचाता है। और चूंकि बात जब हो रही है बॉलीवुड की, ऐसे में हम रफी दास साहब को कैसे भूल सकते हैं। तो पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

तो कई लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का, और जब आएंगे देखने तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता लगेंगी कि कैसे डायरेक्शन है और क्या इसमें इफेक्ट इस्तेमाल किए गए और क्या हमें सीख मिलती है। और कहते भी हमने आज सवाल पूछा जो आज का सरताज बनने वाला है व्यक्ति कि भाई साहब रामायण जो फिल्म आ रही है उसमें राम का किरदार किस ने अदा किया है, ये आपको बताना है। और आपके जवाब भी आने शुरू हो गए, बहुत सारे जवाब हमारे तक पहुंच गए और हमें आज का जो बॉलीवुड सरताज है वो भी मिल चुका है और हम जल्दी उसका नाम भी आपको बताने वाले हैं, उनसे बात भी करने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं अगली फिल्म का जिसका बड़ी चर्चा चारों तरफ हो रही है, सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और उसका नाम है भाई तेरा स्टार। तो भाई साहब राघव जुआल पहली बार इस फिल्म में सोलो लीड के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ फिल्में संजय कपूर, निहारिका आयनम और बरखा सिंह, विकास मेहता, विवान वाटेन, चंदन राय सान्याल और कई जाने माने जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं वो भी भाई साहब इसमें नजर आएंगे। आपको कहते ना कि सब कुछ डिजिटल है, तो डिजिटल क्रिएटर्स अगर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चूंकि प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो लोग सोशल मीडिया पर भी इसको देखते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं पूरा समंदर तैयार हो जाता है। यानी अलग अलग से जो दरिया बहता हुआ आता है वो एक समंदर में जाकर मिल जाता है और यही कुछ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप देखने जा सकते हैं भाई तेरा स्टार है, इसकी भी काफ़ी चर्चा रही है और फिल्म का जो निर्देशन है वो विवेक बी अग्रवाल ने किया है, जबकि इसके संगीत को अमित त्रिवेदी ने अपने अंदाज में सजाया है। इसकी कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी अजय सिंह नाम के एक ऐसे नौजवान के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को भविष्य का सबसे बड़ा बॉलीवुड स्टार यानी सुपर स्टार मानता है और एक ही रात में उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है जहां सपने हैं, हंगामा है, गलतफहमियां हैं, लगातार आने वाले ट्विस्ट हैं जीवन के, और वो उसे ऐसी मुश्किलों में फंसा देते हैं जिनके उसने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन एक रात ऐसा कुछ होता है कि स्टार बनने का सपना शायद उसका सच होगा या नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क वहां होता है और धीरे धीरे करके इन सवालों के जवाब जानने पड़ते हैं और जी सस्पेंस क्रिएट करती है और जिस तरह की परेशानियां वहां पर आती हैं बस देखते मिलते हैं। अगर आपको जाना है तो जाइए और इस फिल्म का लुत्फ उठाइए, क्योंकि वीकेंड में यही तो धमाल होता है ना। गीत कुछ अलग अंदाज में बॉलीवुड से जुड़ा हुआ।

0: तो भाई गीत तो यूं ही बजते रहेंगे, लेकिन जब बात आज के सरताज की हो तो सरताज से भी बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में सरताज के बिना तो कुछ भी नहीं है, और सर पे जिसके ताज हो उसको ही तो सरताज कहते हैं। तो आज के सरताज कौन है हम जान लेते हैं फटाफट कि कौन हमारे साथ जुड़ रहा है भाई। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप कैसे हो?
0: हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तरुण कोहली। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं तरुण कोहली हैं, सूरज कुंड रोड मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले हम तक अपना जवाब पहुंचाया है। और तरुण जी, हमने सवाल पूछा था आपसे कि रामायण जो फिल्म आ रही है उसमें श्री राम, प्रभु श्री राम का किरदार किसने निभाया है, तो आप जरा जवाब दे दीजिए सबको ताकि लोग समझ जाएं।
1: सर, रणबीर कपूर जी ने।
0: चलिए, बहुत एकदम सटीक जवाब है आपका, रणबीर कपूर ने ये किरदार निभाया है। क्या करते हैं आप तरुण जी?
1: सर, हमारे यहाँ मोटर वेंडिंग का काम होता है।
0: मोटर वेंडिंग का काम होता है, तो प्रोग्राम डेली सुनते हैं क्या आप?
1: हाँ जी, डेली सुनते हैं।
0: क्या अच्छा लगता है आप?
1: सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक रहते हैं हम।
0: तो दिनचर्या क्या रहती है आपके, कैसे प्रोग्राम सुन लेते हैं इतने बिजी दिनचर्या में आप?
1: काम करते रहते हैं, चलता रहता है, प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश प्यारा सा हमारे आपके लिए, इस बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, जिन आरजूस को आप पसंद करते हैं या जिस प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैम, अच्छे लगते हैं सारे प्रोग्राम, बढ़िया लगते हैं, और सबसे पहले सावन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: चलिए तरुण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। बहुत खुश हैं आप हमें सुनते हैं
1: जी। सलीम मलिक भी जी बहुत टाइम से सुन रहे हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं।
0: चलिए, इससे पहले कब बने आप सरताज?
1: काफी टाइम हो गया, वैसे तो हम बनते रहते हैं।
0: अच्छा, बनते रहते हैं, चलिए ये भी है कि बार बार सरताज इतने ताज संभाल के रख लीजिए आप, क्योंकि ये भी काम आएंगे बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हम तक जवाब पहुंचाया है। तरुण ने तो जवाब पहुंचाया है, इसके साथ रोहित श्रीवास्तव ने भी जवाब हमको भेजा है। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से ही हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही यहाँ पर कान्हा है मेरठ से, इन्होंने भी लिखा है रणबीर कपूर। और नीलम ने दिल्ली बरवाला से भेजा है, और इसके साथ ही अरुण सेन जिला धार मध्य प्रदेश से, निकिता परेकर ने पुणे से हमें सही जवाब भेजा है। तो आप लोगों के जवाब बहुत सही हैं। इसके साथ ही प्रवीण चौहान ने भी खरगांव से हमें संदेश भेजा है कि इनका भी जवाब एकदम सही है। और कंचन सोनिया विहार दिल्ली से भी, इन्होंने भी सही जवाब एकदम भेजा है। भाई साहब, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास है। वाह भाई वाह। सुनील कुमार ठाकुर पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, इनका भी जवाब एकदम सही, एकदम बिंदास, बढ़िया।

रणबीर कपूर इन्होंने भी जवाब दिया, ये शुभम कुमार यादव पटना से, और विनीत कुमार बदायूं से इन्होंने भी सही जवाब भेजा है, संदीप भट्ट बठिंडा पंजाब इन्होंने भी जवाब भेजा है सही सही, तो आप सब सही सही हैं। और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे हमें जवाब मिले हैं, ये जवाब बताते हैं कि भाई साहब आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और काम भी करते हैं, और कहते हैं कि रामायण का जो भव्य आगाज हो रहा है उससे लोग दो चार होना चाहते हैं, तो कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में जी जाती हैं, और ऐसी एक अमर गाथा है रामायण की, और अब यही कालजयी महाकाव्य भारतीय सिनेमा का सबसे बड़े कैनवास पर उतरने जा रहा है। निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का जो ट्रेलर है रिलीज हुआ और बहुत उत्सुकता है आप लोगों के अंदर, सोशल मीडिया पर भी इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है, और ट्रेलर को दर्शक इसकी भव्यता विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमाई प्रस्तुति के लिए जमकर सराह भी रहे हैं, और सबको यही उत्सुकता है कि कैसे जाकर देखें। और ये जो कहानी है सिर्फ भगवान श्री राम और रावण की युद्ध की कहानी नहीं है, ये सत्य और असत्य, त्याग और कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा की ऐसी यात्रा है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, और अयोध्या की भव्यता, मिथिला की सुंदरता और लंका की विराटता की झलक दर्शकों के मन के अंदर एक अलग ही उत्सुकता जगा रही है, और फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जिन्होंने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासकर रावण का दमदार लुक, भगवान श्री राम का शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व और हनुमान जी की प्रभावशाली झलक। तो आप इंतजार कीजिए क्योंकि ये फिल्म जो है जब आएगी तो बड़े पर्दे पर सब कोई तैयार है देखने के लिए, तो बहुत सारी हैं, और इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इस वीकेंड जो है एंटरटेनमेंट प्रेमियों के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है, सिनेमाघरों में तो भाई तेरे स्टार, हनुमान अंश जैसी फिल्में हैं, और OTT पर बात करें तो है जवानी तो इश्क होना है, बालन द बॉय जैसी फिल्में आ रही हैं, तो पूरा वीकेंड आपका बहुत फर्स्ट क्लास होने वाला है। एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी आपके अपने गीत के साथ यानी मेरा वाला सॉन्ग के साथ। हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि ये सफ़र जो है चलता रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा, हमारी जगह भी लेता रहेगा। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री लालचंद जोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरलम में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की थी। और अब खेल जगत से समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह और रजत पदक विजेता एथलीट सीमा कलीरामना को बधाई दी। और अंत में अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप

में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: मैं हूं अरुणा उम्मट, इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली की ज्वाइंट सेक्रेटरी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। मेरा आप सबको नमस्कार। मेरी आज की रेडियो वार्ता का विषय है ई सिगरेट्स, अ हार्मलेस हैबिट और एन एमर्जिंग हेल्थ क्राइसिस, यानी ई सिगरेट्स एक हानिकारक आदत या उभरता हुआ स्वास्थ्य संकट। आप जानते भी हैं और बहुत बार इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली द्वारा आयोजित रेडियो टॉक्स में सिगरेट्स और बीड़ी आदि के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में चर्चा हो चुकी है। तंबाकू सेवन से विभिन्न प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारियां और अनेक प्रकार के कैंसर्स। आज हम तंबाकू की नहीं बल्कि तंबाकू रहित उत्पाद की बात करेंगे, जिसे ई सिगरेट्स या वेप कहते हैं। पहले तो यह समझते हैं कि ई सिगरेट्स होते क्या हैं। ई सिगरेट्स या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक बैटरी ऑपरेटेड उत्पाद है, जिसमें तरल यानी लिक्विड निकोटीन को अन्य रासायनिक तत्वों के साथ मिलाकर और हाई टेम्परेचर पर गर्म करके एरोसोल बनाया जाता है, जिसका कश खींचा जाता है। इन ई सिगरेट्स की शुरुआत लगभग सन 2000 में धूम्रपान के सुरक्षित विकल्प यानी सेफ अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग के रूप में हुई थी, परंतु जल्दी ही यह आज के किशोरों और युवकों की आकर्षक चमक दमक से भरी जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। यह एक

ई सिगरेट्स जेब में रखने वाला एक छोटा सा उपकरण है जो अनेक आकर्षक डिज़ाइंस में बनने लगा है, जैसे पेन, सिगार, पेन ड्राइव आदि। इनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल फ्लेवर्स डालकर इनके स्वाद को बढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को भी इसकी ओर आकर्षित किया जा सके। ये टबैको इंडस्ट्री की बच्चों को लुभाने की एक चालाक नीति है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से चमकदार खुशबूदार उपकरण जो एक पार्टी फैशन बन गया है, उसके पीछे निकोटीन की महामारी छिपी हुई है? यह केवल एक गलतफहमी है या मिथ है कि ई सिगरेट्स का एरोसोल हानि रहित है, क्योंकि इसमें कोई तंबाकू ही नहीं होता। सच तो ये है कि ई सिगरेट्स का सेवन करने वाले एक ही सेशन में इतनी अधिक मात्रा में निकोटीन को अपने अंदर खींच लेते हैं जो 20 सिगरेट्स में पाई जाने वाली निकोटीन के बराबर है। यह निकोटीन क्या है? यही तो वो है रसायन या केमिकल जो एडिक्शन या लत लगाती है और स्मोकर्स को स्मोकिंग छोड़ने ही नहीं देती। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेपिंग करते हैं और इतनी अधिक मात्रा में निकोटीन अपने अंदर खींच लेते हैं, उनके लिए इस लत की वजह से वेपिंग छोड़ना कितना कठिन होगा। क्या निकोटीन केवल लत ही लगाती है? जी नहीं, निकोटीन सेवन के बहुत से दुष्परिणाम भी हैं, यानी इल इफेक्ट्स हैं, जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर देवी शेट्टी, जो एक विख्यात और अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय प्रणाली का मेन काम है कि बिना क्लॉट फॉर्मेशन के हमारे शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, परंतु वेपिंग इस सामान्य गतिविधि को बिगाड़ देती है। निकोटीन की मात्रा शरीर में अधिक होने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का खतरा हो जाता है। वेपिंग करने से हार्ट मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी बढ़ सकता है। WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने चेतावनी भी दी है कि ई सिगरेट्स में पाए जाने वाले रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन आदि और हैवी मेटल्स जैसे लेड, निकल, क्रोमियम आदि को जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उनके वेपर्स को इनहेल किया जाता है, तो फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हो सकती है जिसे पॉपकॉर्न लंग कहते हैं। ये पॉपकॉर्न लंग्स क्या होते हैं? इनसे लंग्स के छोटे एयरवेज में सूजन आ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसका इलाज काफ़ी कठिन हो सकता है। वेपिंग फेफड़ों की क्षमता को कम कर देती है और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप यह समझिए कि फेफड़े केवल तंबाकू से ही नहीं खराब होते, बल्कि ई सिगरेट्स के लंबे और अधिक सेवन से भी किशोरों और युवकों के लंग्स खतरनाक लंग डिजीज से ग्रस्त हो सकते हैं, भले ही वे धूम्रपान ना करते हों। अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे 12-13 वर्ष की आयु से ही अपने मित्रों और सेलिब्रिटीज़ को देखकर वेपिंग की आदत में फंस जाते हैं, यह सोचकर कि वेप्स तो तंबाकू रहित हैं,
इसलिए हानिकारक।

हो ही नहीं सकते। फिर नतीजा क्या होता है? वे निकोटीन की एडिक्शन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। वेपिंग बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बाधा डालती है, जो उनके ध्यान, कंसंट्रेशन और पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित करती है। वेपिंग को एक गेटवे ड्रग भी माना जाता है। इसका क्या अर्थ है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिव्यूज से पता चलता है कि जो वेपिंग शुरू करते हैं, उनकी स्मोकिंग शुरू करने की संभावना 3 गुना अधिक हो जाती है, और जो स्मोकिंग क्विट या धूम्रपान छोड़ने के लिए वेपिंग करते हैं, उनकी दोबारा धूम्रपान शुरू करने यानी स्मोकिंग रिलैप्स की संभावना 2 गुनी हो जाती है। वैसे तो सरकार ने वेपिंग को रोकने के लिए एक एक्ट 2019 में लागू किया था, जिसे पैका कहते हैं। इसका विस्तार में अर्थ है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, परंतु यह ठीक से लागू नहीं हो पाया, जबकि कोटपा के अंतर्गत पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान नहीं कर सकते, परंतु ये स्मोक फ्री यानी बिना धुएं वाले वेप्स कहीं भी, यहाँ तक के स्कूलों के बच्चे भी बिना किसी की नज़र आए इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आप ही बताइए, ऐसे हालात में हम अपने बच्चों को ई सिगरेट्स के दुष्परिणामों से कैसे बचाएं? मेरा तो यह सोचना है कि हमें बच्चों से स्कूल और घर दोनों स्तर पर बात करनी चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगी कि स्कूलों में काउंसलर और स्कूल डॉक्टर द्वारा ई सिगरेट्स के बारे में जागरूकता के सेशंस रखवाए जाएं, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वे बच्चों के व्यवहार बदलाव को नोटिस करें, और वे स्वयं या काउंसलर द्वारा उनसे बातचीत करके उनकी मानसिक स्थिति और परेशानी को समझने की कोशिश करें। उन्हें यह कहकर कि वेपिंग मत करो की बजाय यह समझाएं कि वेपिंग क्यों ना करें। उन्हें ये समझाएं कि वेपिंग फैशन नहीं, एक ना छूटने वाली निकोटीन की लत है, जो उनके विकसित हो रहे दिमाग को कमज़ोर कर रही है और उनकी पढ़ाई में बाधा डाल रही है। घर में माता पिता बच्चों से खुलकर बात करें, डांटे नहीं। वे स्वयं उनके लिए रोल मॉडल बने। यदि वे स्वयं स्मोकिंग या वेप कर रहे हैं तो बच्चा तो उसे नॉर्मल ही समझेगा ना। पढ़ाई और मित्रों के प्रेशर की वजह से बच्चे वेपिंग को स्ट्रेस बस्टर समझते हैं। उन्हें किसी खेल, म्यूजिक या अन्य किसी हॉबी में व्यस्त रखने की कोशिश करें। बच्चों पर नज़र रखें पर जासूसी नहीं। उनके कपड़ों में कोई विशेष मीठी खुशबू आए, या बच्चे को बार बार प्यास लगे या खांसी आए, तो चिंता जताएं। यह संकेत हो सकते हैं, परंतु उन पर आरोप मत लगाएं। इस तरह शायद घर के सदस्य और स्कूल दोनों मिलकर बच्चों के सहायक के रूप में बातचीत करके उन्हें वेपिंग द्वारा हो रहे स्वास्थ्य संकट से बचा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और सुझाव हों तो आप हमसे इंडियन कैंसर सोसाइटी की हेल्पलाइन द्वारा अवश्य साझा करें। आप हेल्पलाइन का नंबर नोट कर लें, 9910516562। फिर से दोहराती हूँ, 9910516562।

0: को।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम आपका अपना है यहाँ पर। कहते हैं ना, तेरा ना मेरा, क्या बोले इसका प्रोग्राम को नाम कैसे दें, तेरा कहें या मेरा कहें। अरे सबसे बेहतर है मेरा मेरा मेरा, यानी मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा मेरा करते करते ये हमारा हो जाता है और हमारा ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहे, हमारी कोशिश ये रखती है। चलिए फिलहाल आपके फटाफट संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और आप सुनना चाहते हैं जो प्यारे प्यारे गीत, वो तो सुनाएंगे, लेकिन इस प्यारे से नगमे के साथ शुरू करते हैं। आज का ये मेरा वाला सॉन्ग है और इस मेरे वाले सॉन्ग से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा आपका सबका जो सौदा है ना, वो खरा खरा है। किसी ढोल के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह, कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग और आप अपने अपने सॉन्ग के साथ तैयार रहिए। संदेश हमें भेजिए 9868107070 पर। सुन रहे हैं हम आपको यहाँ पर, बातें होंगी दिल से दिल तक।
2: स्लो

और भाई साहब हमारे आपके बीच में सौदा खरा खरा है और पंकज अमरावती जी ने यहाँ संदेश में भेज दिया भाई, मेरा वाला सॉन्ग, मेरा वाला सॉन्ग, मेरा वाला सॉन्ग। और इन्होंने जो भेजा है बस कहा है साहब हम तो बस जुड़े रहते हैं आपसे, हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जिस फिल्म के गीत की बात की भाई वो ऑल टाइम हिट है, उसको जब भी आप सुने तो आप मस्त हो जाते हैं। तो पंकज जी चलिए हम आपकी बात रख लेते हैं और यहाँ पर हम एक बेहतरीन खूबसूरत सा गीत बजा देते हैं और हर कोई थिरकने पे मजबूर हो जाता है। जरा गीत सुनिए फिर आप खुद बताइएगा है ना ये वधिया वधिया वाला सॉन्ग है ना, ये मेरा वाला नहीं इनका वाला है लेकिन प्रोग्राम मेरा वाला ही चल रहा है भाई साहब, सुनिए गीत। और देखिए ये धुन जब बजती तो अपने आप जहन में कौन आता है, वो गोविंदा भाई आते हैं। और ये नाम बड़ा खूबसूरत है, वो गोविंदा की स्माइल बड़ी खूबसूरत थी और जब ये गीत बजता है तो जो भी जोड़े होते हैं

नए पुराने हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है, अपने प्रेम का इजहार करता है और इसके साथ बताता है कि जिंदगी में संघर्ष कोई हो, हमारी तरन्नम ऐसे ही चलती रहेगी, हमारा संगीत बजता रहेगा।

तो चलिए भाई, कोई आए ना आए, आपका गीत यहाँ पर बज चुका है भाई साहब, और हम उम्मीद करते हैं गीत आपको बेहद पसंद आया होगा, बाकी लोगों को भी पसंद आया होगा हम ये मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश ज़रा और पीछे हट कर चली जाती है। और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल से कविता है उत्तराखंड से, ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पसंद का भी एक गीत बजा दीजिए, अगर आप बजा सकते हैं तो क्यों नहीं बजा सकते, अगर आपका संदेश हम तक पहुँचा है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके गीत बजा दें। तो इनकी फरमाइश क्या है ज़रा आप देखिए, फिल्म भी खूबसूरत है और गीत भी खूबसूरत है। संदेश बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि गीत बजते रहे और आपके दिल के तारां से जुड़ रहे हैं।

तो भाई उम्मीद करते हैं गीत ये आपका भी भाई साहब बज गया यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हमारे साथ जो हमें संदेश भेजा है सुनीता शर्मा ने शालीमार बाग से भेजा है और वो जो गीत सुनना चाहती हैं उसको भी आप सब सुन लीजिए, क्योंकि हम सब की चॉइस क्या है, पसंद क्या है और कहाँ से कहाँ के तार जुड़ते हैं, मेरा वाला सॉन्ग में ये पता लगता है कि भाई हमारे श्रोताओं को कब से कब तक की नॉलेज है और कहाँ के गीत और किस तरह के गीत उन्हें पसंद हैं। तो लीजिए एक और प्यारा सा नगमा हम यहाँ पर आपके लिए बजाने जा रहे हैं। फिल्म है घूंघट की आड़ से और नगमा मैं क्यों गाऊँ मैं क्यों बताऊँ, सुन लिए ने भाई। वैसे कुमार शानू की आवाज़ तो दिलों में रास करती है, तो देखिए कि ये भी हो रहा है ऐसा ही कुछ ऐसा, तो सुनिए ये प्यारा सा गीत अपने टाइम का सुपर डुपर हिट है ये गीत।

तो घूंघट की आड़ में दिलबर का। और कहते हैं कि अपने अपने समय की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं जो इस बात का एहसास कराती हैं कि कितनी खूबसूरत वो अदा रही होगी जो घूंघट की आड़ से देखती होगी उस शख्स को जो उसके दिल में अपनी जगह बना चुका है। और यही खूबसूरत होती है गीतों में, क्योंकि गीत हमेशा उस काल को, उस समय को याद कराते हैं, उन पलों को याद कराते हैं जिनमें उस दौर के गायकी होती है, उस दौर का एक अंदाज होता है, उस दौर की अदाएँ होती हैं, उस दौर की परंपराएं होती हैं। एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर जो है खेकड़ी गांव बिजनौर से ये संदेश भेजा है दिव्यांशु, आशुतोष और सूर्य नारायण वसुंधरा यादव ने कि ये गीत हमें ज़रूर सुनाएं। आप देखिए गीत आप सुनिए और फिर हम बताते हैं कि किस मूवी से ये गीत है और बोल किसके हैं। और कहते हैं कि संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उन पलों में वापस ले जाता है जहां हम वापस नहीं जा सकते। कल्पना हमेशा करते हैं एक टाइम मशीन हो जो हमें हमारे पलों में वापस ले जा सके, लेकिन ये संगीत, ये अल्फाज, ये यादें वापस हमें वहां ले जाते हैं। चलें

तो भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि ये गीत भी अब आपकी शिकायत जरूर दूर हो गई होगी। हमने आपके गीत को बजाया और देखिए, यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आप जिस गीत को सुनना चाहते हैं वो आपकी फरमाइश पर आप सुनते हैं और अपनों को भी सुनाते हैं। यानी आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए, आप समझते हैं ना। तभी तो हमारे आपके दिल के तार दिल तक जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जब भी बात होती है मेरा वाला सॉन्ग की, तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करने में और आपके संदेश पढ़ने और डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के जो गीत हैं, अलग अलग समय के गीत हैं, वो यादें जो हैं फिर से ताज़ा हो जाती हैं। चलिए अब एक और फिल्म की तरफ हम जुड़ते हैं। एक और संदेश जो हमारे पास आया वो है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म 3 इडियट्स से इस गीत को।

फिल्म बड़ी जबरदस्त थी। और ये आवाज भी बहुत खूबसूरत है। ये शब्द भी बहुत बेहतरीन है। सुनिए।

0: तो भाई साहब अब सॉन्ग तो आप सुन रहे हैं जो कि मजे ले रहे हैं, काम भी करते जा रहे हो और अब अपने अपने गीत भी सुनते जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा विराम लेने दीजिए। बस हम यूं गए और यूं आए, आप इंतजार करिए क्योंकि आपके बहुत सारे संदेश हैं हमारे पास। तो बहुत सारे संदेश हैं तो बहुत सारे गीत भी तो होंगे भाई साहब, क्योंकि प्रोग्राम है
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: भाई साहब प्रोग्राम चल रहा है।

मेरा वाला जंग और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये भी आप लिख लिख के भेज रहे हो, हमको सब पता है। ये धीरे धीरे करके जो बातें आप करते हो ना, दिल को लुभाते हो, तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ कह जाते हो बातों ही बातों में। कहते रहिए क्योंकि हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास जो संदेश आया है वो भगवती का आया है न्यू दिल्ली से, और इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है बस वो गीत आप सुनिए ना। ऐसा लग रहा है चिड़ियों की चहचहाट दोपहर में सुबह कैसे हो गई है। खैर जो भी हो, हमने कहा ना उन्हीं पलों में ले चलेंगे जिनकी आपको तलाश है। सुनिए सुनिए।

0: है झमझम।
1: क्या मौसम आया है,
2: तो भैया मौसम कोई भी हो, गीत आपके जो है आपकी पसंद के मिलते रहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम बनाई आपके लिए है। मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। अब एक गीत, ऐसे गीत की फरमाइश आई है जो बहुत लंबे टाइम से मैंने भी नहीं सुना, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे जहन में बसी हुई।

या क्योंकि वो गीत जब बजता था तो हाँ कुछ कहता था वो, दे उसके जज्बात थे, उसमें कुछ बात थी। और ये फरमाइश हमारे पास भेजी है सुरेश वाडेकर की आवाज़ में तो है लेकिन नाम इनके कहाँ है भाई साहब, अपने नाम तो लिख देते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर उठिए। हर्षवर्धन पांडे जी ने भेजी ये फरमाइश हमें, ए के पांडे जी, और ज़िला पन्ना, जो ज़िला है वो पन्ना है मध्य प्रदेश से। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया संदेश आपने भेजा है। खैर थोड़ी सी त्रुटि, उसको हम वापस सही कर देते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से इन्होंने भेजी है, ए के पांडे साहब ने और हर्षवर्धन पांडे जी ने। तो गीत बहुत प्यारा है इनकी, आपकी जो चॉइस है वाकई बहुत अच्छी है। और लंबे समय के बाद इस गीत को सुन रहे हैं, आप भी इस गीत का लुत्फ उठाइए कुछ नगमे, और फिर बस जितना वक्त है उसमें सुन ही लेते हैं। और चंद्रचूड़ की इस फिल्म से एंट्री हुई थी, जबरदस्त मूवी थी, और ये गीत हर जुबां पर उस वक्त बना हुआ था। और कहते हैं कि वाकई लिखने वाले जो लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे दिल के जज्बात अपने अल्फाजों में वो केयर कर

तो है ना, ये गीत दिल को छूने वाला। और एक गीत और हम जो फरमाइश हमारे पास आई है तुलसीपुर नेपाल से आई है, दिनेश कुमार भंडारी की फरमाइश है। और इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत से गीत लिखकर भेजा है। चलिए हम इस गीत को बजाते हैं और इसके साथ ही आपको छोड़कर जाते हैं। हमको फिलहाल दीजिए इजाज़त, तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि आज तो 31st है, महीने का आखिरी दिन है, तो आप बिंदास होइए क्योंकि और ये इस गीत का आनंद लीजिए। मैं आपका दोस्त रविंद्र सिंह आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कार्यक्रम था मेरा वाला सॉन्ग, तो ये आपका वाला सॉन्ग भाई साहब यहां हमने बजा दिया।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। सरकार ने कहा है कि वे विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौर पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाएगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसे कालजयी कृतियों की रचना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह और रजत पदक विजेता एथलीट सीमा कलीरामना को बधाई दी है। अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन लेकर मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश्रजन। तो चलिए जल्दी से अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और चल दीजिए मेरे साथ इस मानसिक यात्रा पर जहां मैं आपको लेकर चली हूं दिल्ली से दूर पहाड़ों की ओर। तो कहाँ चलना है हमें? हमें चलना है आज खजियार। जी हाँ, खजियार की बात करें तो हिमालय की गोद में बसा, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का एक बेहद प्रिय पर्यटक स्थल है खजियार। खजियार पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि ये कई शहरों, कस्बों और बड़ी जो नेटवर्किंग प्लेसेस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आप बाय रेल, बाय एयर या फिर बाय रोड भी खजियार तक पहुंच सकते हैं। खजियार अगर आपने कम सुना है तो आप इसे इसके नियरेस्ट फेमस प्लेस डलहौजी और चंबा के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि डलहौजी और चंबा तो बहुत फेमस है तो लोगों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन खजियार अभी थोड़ा कम एक्सप्लोर हुआ है। तो हम खजियार को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये एक वो स्थल है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रकृति के और करीब आ गए हैं। तो चलते हैं इस सफर पर। जैसे मैंने कहा, बांध लीजिए अपने कमर की पेटी को और चल दीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है रेनबो डेस्टिनेशन। तो मैं लेकर चली हूँ आपको आज पहाड़ों में, लेकर चली हूँ खजियार। तो खजियार पहुँचने के लिए यदि आपको बाय एयर चूज आपने किया है कि हम बाय प्लेन जाएंगे, तो आप नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वहाँ जा सकते हैं। वो दो एयरपोर्ट हैं जो कि बिल्कुल लगभग बराबर किसी दूरी पर पड़ते हैं खजियार से। तो पठानकोट जा सकते हैं आप, सबसे पहले दिल्ली पहुंच सकते हैं, दिल्ली से भी पठानकोट के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं जो कि 100 किलोमीटर्स, मान लीजिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और एक दूसरा जो नियरेस्ट हवाई अड्डा इसके पास पड़ता है वो है गग्गल। जी हाँ, 110 के आसपास की दूरी पड़ती है अगर आप दिल्ली से गग्गल बाय प्लेन जा रहे हैं। और अगर टाइम की बात करें तो 1.5 घंटे की ये फ़्लाइट होती है दिल्ली से गग्गल तक की भी, और अगर दिल्ली से आप पठानकोट भी जा रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वहाँ उतरकर आपको खजियार के लिए बस ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं। और आपने अगर चूज़ किया है कि बाय ट्रेन जाना है तो बस आपको पठानकोट जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँचना है। तो पठानकोट के लिए तो दिल्ली से ही, या फिर कहें कि आप किसी और क्षेत्र से, अगर दिल्ली के आसपास यूपी या कोलकाता कहीं से भी आप हैं तो आप बाय टू फ्लाइट्स भी सफ़र कर सकते हैं, या कि आप पहले दिल्ली तक की ले लें और फिर, या फिर सीधा पठानकोट तक की भी आप जो है अपनी टिकट करवा सकते हैं, फिर पहुंच जाइए पठानकोट से वही बिल्कुल बाय टैक्सी या बाय बस भी आप पहुंच सकते हैं खजियार के लिए। और अगर दिल्ली वालों की बात करें तो वो तो फ्राइडे नाइट कभी भी गाड़ी उठाते हैं और 10 से 12 घंटे की ड्राइव करके पहुंच जाते हैं खजियार। तो दिल्ली से खजियार की बाय रोड दूरी देखें तो ये कुछ 581-82 किलोमीटर पड़ती है, और 12 घंटे का सफ़र अगर आप बाय रोड कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो जो खूबसूरत नज़ारे, वो पहाड़ आपको नज़र आएंगे ना, आपका मन करेगा यहीं ना रुक जाऊं। कहते हैं ना, धरती पर अगर स्वर्ग को देखना है तो प्रकृति के सुंदर नज़ारों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति की खूबसूरती को ना सिर्फ कैमरे में कैद करना है आपको, अपने मोबाइल को साइड रखकर आप इसे आँखों में भी कैद कर सकते हैं। खूबसूरती आँखों को सुकून देती है, दिल दिमाग आपका मन जो है एकदम शांत निर्मल हो जाता है। ऐसा अनुभव करने के लिए तो ज़्यादा दूर नहीं, बस 10-12 घंटे का एक रोड ट्रिप कीजिए दिल्ली से खजियार तक का, और इस मनोरम जगह को अपनी आँखों में उतार लीजिए। आप जानते हैं खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड, मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। डलहौजी के पास, जैसे मैंने बताया कि डलहौजी के आसपास ही है खजियार, तो एक छोटा सा शहर है और माने टूरिस्ट की, तो यहाँ पर जंगलों, झीलों और प्राकृतिक खूबसूरती का एक

अनूठा सा आपको ना एक पैक मिलेगा, एक संयोजन सा दिखेगा। और इस स्थान की खूबसूरता में चार चांद लगाने के लिए राजपूत और मुगल साम्राज्य जो थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। देखें तो 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है खजियार। यहाँ की फेमस कुछ प्लेसेस की बात करें तो 9 छेदों वाला एक गोल्फ कोर्स यहाँ पर फेमस है, जो कि ग्रीनरी और काफ़ी ऐसे जो दृश्य हैं जो आपका मन मोह लेंगे। खजियार अपने आप में एक छोटा सा पठार है, एक छोटी सी झील भी है यहाँ पर, जो कि टूरिस्ट का मनपसंद प्लेस भी है। खजियार हरी घास के मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा स्थल है, जहाँ पर कि एक मंदिर भी है। वो आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि मन करेगा कि यहाँ जो शांति है ना उसी में बस जाएं। और वहीं देखिए, हरे भरे देवदार के जंगलों के बीच खजियार झील, जो कि प्राकृतिक भव्यता का एक खूबसूरत उदाहरण है। 1920 मीटर की ऊंचाई पर यह खजियार झील स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि कहीं घूमना है तो खजियार मुझे लगता है एक ऐसा प्लेस है जो आपके मन को मोह लेगा।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों वाकई जन्नत सा लगेगा ये सफर जो आपको खजियार तक लेकर जाएगा। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन के साथ। अब पूछेंगे आपकी खजियार में झील तो घूम ली और अब कहाँ चले, तो चलिए अब आपको एक और जगह लेकर चलती हूँ। वो जगह है पंच पांडव वृक्ष, जहाँ खजियार झील के आसपास जो घने देवदार जंगल बने हैं ना, वहाँ पर आपको एक वृक्ष देखने को मिलेगा। ये विशिष्ट वृक्ष जो है पंच पांडव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ में 6 टहनियां हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच पांडव वृक्ष जो है एक विश्राम ग्रह है जो दूर गांवों की ओर है, और आप जब यहाँ बैठेंगे ना तो आपको एक अल्टीमेट सुकून सा ही लगेगा। सुभाष बावली जा सकते हैं, और अगर देखें सुभाष बावली तो आप डलहौजी से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे अगर निकलते हैं, खजियार से लगभग 32 किलोमीटर पड़ता है ये, तो सुभाष बावली जो है ये भी ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच एक खूबसूरत सी जगह है, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। और खजियार की बात करें तो खजियार झील, खजी नाग मंदिर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। 12वीं शताब्दी में बना ये एक पुराना लकड़ी का नाग देवता का मंदिर है, और अद्भुत वास्तुकला जो इस मंदिर की है वो आपका मन मोह लेगी। आप चाहें ट्रैकिंग करना तो जंगल चलिए, कला टॉप वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर आपको वन्य जीवों के बीच एक अलग ही माहौल, एक प्यार, एक सुकून देखने को मिलेगा। कैलाश गांव, जी हाँ, ये अपने आप में वो गांव है जो कि सुंदरता और शांति से परिपूर्ण है। अगर मौसम साफ हुआ तो आप यहाँ से पवित्र कैलाश पर्वत की का जो दर्शन है वो भी कर सकते हैं। क्या क्या करें अगर आपको कुछ एक्साइटेड करना है खजियार पहुंचकर, तो आप पैराग्लाइडिंग या फिर जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग कैसा रहेगा, घास के मैदानों के बीच में घोड़े की सवारी का लुत्फ तो मुझे लगता है कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। देखिए अगर बाय रोड की जैसे मैंने बात करा दिल्ली से खजियार अगर आपको जाना है, तो आप NH 44 नेशनल हाईवे 44 लीजिए और इसी पर चलते हुए आप पहुंचेंगे खजियार। अगर डलहौजी से आप खजियार की ओर बढ़े हैं तो आपको रस्ते में बागरोटा हिल व्यू पॉइंट मिलेगा, मदराणी मंदिर मिलेगा, लक्कड़ मंडी देखने को मिलेगी, और अगर आप चंबा से खजियार आए हैं तो यहाँ रस्ते में आपको हनुमान मंदिर, मंकी पॉइंट, गुरी पॉइंट, देनकुट घाटी जैसे मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। सुन रहे हैं आप आशियाना स्पेशल रेनबो डेस्टिनेशन, चले हैं हम आज खजियार के सफर पर।

आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप सृजन के साथ और रेनबो डेस्टिनेशन आज हम चले हैं खजियार। जी हाँ, पहाड़ियों का ये सफर, खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की जगह है खजियार। जी हाँ, चीड़ और देवदार के वृक्षों से ढका है खजियार। झील पहुँचें चाहे आप यहाँ के गांव देख लीजिए, ये खास है अपने आप में। हमने खजीनाग मंदिर की भी बात की जो कि नाग देवता को समर्पित है और ये काफ़ी पुराना है। जब आप ऐसे किसी पुराने मंदिर का की यात्रा पर जाते हैं तो आपको एक आत्मिक शांति और मानसिक सुकून भी प्राप्त होता है। अगर आप पूछते हैं कि कितने दिनों के लिए जाना है तो 3 दिनों में आप पूरा खजियार एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेस्ट टाइम है मार्च टू अगस्त तक का। जी हाँ, मार्च से अगस्त तक। यदि आप जब दिल्ली में गर्मी है और कुछ कूल प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो खजियार बेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखें, क्योंकि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। लुटेरा, गदर एक प्रेम कथा, हिमालय पुत्र, जो इन फिल्मों में आपने सीन्स देखे ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से, तो ये सभी शूट हुए हैं खजियार में। तो आप भी अपने बैकपैक को और मजबूती से बांध लीजिए, सब जरूरी चीजें रख लीजिए और अपने वीकेंड को प्लान कीजिए खजियार के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
3: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
3: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
3: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
3: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी।
3: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
3: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
3: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
3: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
3: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic

0: cit.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई

0: समाप्त करने के बाद उन्होंने बम्बई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
0: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
1: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
0: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
1: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
2: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
3: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
4: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
4: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
0: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
6: लयात्मक प्रस्तुति।
5: शीर्षक है
6: अभी न होगा मेरा अंत।
5: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,

0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहरा आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
3: नमस्कार जी।
2: तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत लेकिन एक प्यारे से गाने के साथ।

0: डॉक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या।
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझे, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं, पूर्ण आनंद के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है। जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार, विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को

0: विकसित करते हैं,
1: जी
0: उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
1: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है, वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
1: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर लें कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है ना।
1: जी जी,
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व हैं उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोचिए आज से
1: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है। अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें
1: जी,
2: तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
1: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो है वो आपको एक नेटवर्क के थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जेंट आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस है जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है आपके इन, और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जैसे कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है। और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल। अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है,
1: हाँ।
2: तो फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा
1: जी।
2: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते हैं,
1: हाँ,
2: ये भी एक तो है ना,
1: हाँ।
2: तो देखिए भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं,
1: हाँ।
2: जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं,
1: हाँ।
2: है ना, एक एनके होता है जो नेचुरल किलर होती हैं।
1: अच्छा,
2: और एक ये मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी में ये सब चीजें डाली हुई हैं। और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीजों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की है या बाहर से आई हुई है जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो ना हो पाए, और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें। ये इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने मतलब कितने सालों पहले कही थी। तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या हैं, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी जो मैंने ये समझाने की कोशिश किया उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी। अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं
1: जी।
2: धातुएं मतलब जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
1: जी।
2: ये धातुएं हैं। अब ये धातुओं में कौन सी, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज। हाँ, ओज बोलते हैं ना, हाँ, कि आपका ओज कम लग रहा है,
1: हाँ,
2: मतलब आपकी वाइटैलिटी ओवरऑल, हाँ, जो आपको एक जूस की जो जरूरत है, हाँ, वो अब आपका कम लग रहा है,
1: हाँ, हाँ,
2: आप बुझे बुझे से लग रहे हो,
1: हाँ,
2: तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, हाँ, कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। मैं बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ,

0: ताकि ये लोग समझे कि हमारे अंदर खुद सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें। इसीलिए आयुर्वेद की जीवन शैली, इसीलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो कहा गया है, इन सब के साइंटिफिक रीजन हम एक के बाद एक लेते चलते हैं।
1: हाँ, तो डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस ये कॉन्सेप्ट क्या है।
2: देखिए, ओज या ओजस ये वैसे हृदय में अष्टबिंदुवात्मक के इस मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना पौष्टिक है। हाँ। उससे जो रस धातु यानी उससे जो आहार रस मिलता है वो धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है, और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है, उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को बूस्ट करना, तो वो ओज धातु से प्रतीत होता है।
1: जी, जी।
2: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है।
1: अच्छा।
2: तो ओज धातु का बड़ा महत्व है।
1: हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है।
2: जी जी।
1: ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से।
2: जी देखिए, लंघन में जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि आप लंघन क्यों कराते हैं, लंघनम आदव चिकित्सा, यानी पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब पहला पांव है, वो है लंघन कराना।
1: अच्छा।
2: तो लंघन क्यों कराएंगे, जब शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, आम दोष की अवस्था होगी, तो देखिए बिना किसी औषध के आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन करा दीजिए। लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं। लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी।
1: जी।
2: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी।
1: जी जी।
2: तो इसीलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए, व्रत की प्रथा चालू की गई।
1: हाँ।
2: कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी।
1: हाँ।
2: शरीर की भी स्थिति होगी, तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं।
1: जी जी।
2: तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए।
1: जी, तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखे आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है।
0: जी जी।
1: तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
0: देखिए, ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
1: हाँ।
0: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है।
1: जी।
0: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या संयुक्त है, या दो दोष ज्यादा है, तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना, क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना, क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखें तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो है नोट्स, इन सब में आपके जो है इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी हैं वो वहां पे हैं। अब वो कैसे खराब हो रही हैं कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं, जो पचा नहीं फिर खा लिया। तो हमारे यहाँ सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जब पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
1: जी,
0: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और रस धातु, रक्त धातु में नहीं हुआ है।
1: जी।
0: अब आपने कहा कि लंघन,

0: किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
0: अब पंचकर्म क्या है? शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे,
0: नहीं पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा अच्छा,
0: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन, मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए। तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है। हमारे स्रोत क्या है? अच्छा, जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वो नहीं हो रहा।
1: अच्छा,
0: तो वो रुक गए। ये सुनिए, आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का, उसको ब्लॉक कर देंगे।
1: अच्छा,
0: तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा ये तो सबको मालूम है
1: जी,
0: है ना, नंब हो जाएगा।
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ, हाँ,
0: तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व जहां तक पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच रहे, तो अवरोध हो गया। तो अवरोध हो गया, उस आम को हटाने के लिए लंगन श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन चिकित्सक के निगरानी में। अब आपने पूछा कि पानी कैसे है
1: जी,
0: तो पानी का भी वही है, मैं एक गिलास पीती हूँ, आप दो गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या है? 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है। अगर वो हट रहा है तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, जिसके कारण आप स्वस्थ हो। जरा भी आप देख लीजिए, सोडियम बढ़ा दीजिए या पोटेशियम बढ़ा दीजिए, या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना, वो सब आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: और इसीलिए कहा गया है कि पानी जितनी भी सेल्स में, क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं
1: जी, जी।
0: और इसी से सिक्रीशन ब्लड जो है वो आपको पोषण सारे बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है।
1: अच्छा,
0: तो उसको लिक्विड रहना कितना
1: जी, जी।
0: बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ये मालूम है ना
1: जी, जी, जी।
0: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है।
1: अच्छा।
0: ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो, कि ठंडा पानी पियो, कि फला कियो, कि खाने के पहले पियो, कि खाने के, ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले को और कितना पीना चाहिए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास एक बार में पानी पीना चाहिए, लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीने चाहिए, सिप सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि बहाना रसाना वो चलता रहे।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं। ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं। इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन, बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी, हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव कैसे है कि जो रोड, मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है? या
0: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका।
1: हाँ,
0: कि देखिए जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो फाइट कर लेते हैं
1: जी जी।
0: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है, स्किन में जो बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर है, और स्किन में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, पैथोजेंस है, केमिकल्स है, आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रोकते हैं
1: जी।
0: लेकिन गट, मैंने कहा ना गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी की सेल्स हैं
1: जी।
0: तो वो जो जिनको रोड में, जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का, तो उनको खाना भी उतना ही है।
1: हाँ,
0: वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खा रहे हैं
1: जी, जी।
0: ये बात अलग है कि उनको माल न्यूट्रिशन है तो विटामिन सी डी जो हमें जरूरत है,
1: हाँ, हाँ,
0: है जी,
1: जी, जी, जी।
0: ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन डी मतलब डी की कमी है,
1: हाँ,
0: वो अलग इशू है,
1: हाँ, हाँ,
0: कि भाई वो माल न्यूट्रिएंट है,
1: हाँ,
0: उनकी मैकेनिज्म भी स्लो हो जाएगी,
1: हाँ, हाँ,
0: आज नहीं कल। लेकिन जहां तक ये स्वच्छता की बात है
1: जी जी,
0: टू मच हाइजीन, मैं आपको बता दूं, कई लोग दिन भर अपने हाथ जो धोते रहते हैं,
1: हाँ, तो यही इनका पूछना
0: ये है जी। आपको मैं बता दूं, दिस इज अनदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो। तो स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है? देखिए हर चीज का एक साइंस है। टू मच हमारे यहाँ कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य

0: और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्जित है ना
1: जी, जी.
0: तो और उल्टा सीधा और भी वर्जित.
1: हाँ, हाँ.
0: तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि सम दोष समाग्नि, हर चीज सम इक्विलिब्रियम में रखिए.
1: हाँ.
0: तो प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप भी स्वस्थ हो
1: जी. डॉक्टर विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या.
2: जी जी.
1: तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है?
2: देखिए, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये एक ऋतु, जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतुएं हैं, वैसे आयुर्वेद में षड ऋतु मानते हैं, 6 ऋतुएं मानते हैं, पर ज्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को. इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसकी जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है, वो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है, वो आपके आहार पे बात करती है, आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है. इन सब चीजों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें, जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं, वर्षा ऋतु की. अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे, देखिए वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमान हो जाएगा, यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहा है कि भूख नहीं लग रही है,
1: जी, जी.
2: पहला लक्षण. हाँ. इसका मतलब अग्निमान हो गया
1: जी.
2: दूसरा, वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है.
1: हाँ.
2: या लूज मोशंस हो रहे हैं.
1: हाँ.
2: या घबराहट हो रही है.
1: जी, जी.
2: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सबसे मिला जुला होने की वजह से आप में परिवर्तन आए. अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें.
1: जी.
2: खाना शरीर को कम दे.
1: हाँ.
2: तो हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा.
1: जी.
2: जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब में कमी आ जाएगी. तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा.
1: हाँ.
2: फिर क्या खाना नहीं है कोई, जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है
1: जी.
2: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए. जैसे एक है, जल में घुले सत्तू को वर्षा ऋतु में निषेध कहा है, क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है, तो इससे हमें दिक्कत होती. तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीजें, जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन.
1: हाँ.
2: यानी वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो, जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयां हैं, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें.
1: हाँ.
2: ये सब चीजें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए. हल्का सुपाच्य, जैसे खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं, पत्तेदार सब्जियों को रहने दें. क्यों, वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं.
1: हाँ हाँ.
2: तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको मना करते हैं, और ऋतुजन्य फल.
1: हाँ.
2: और ऋतुजन्य सब्जियों का सेवन करें, उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं.
1: तो डॉक्टर साहब, अब सुन लेते हैं एक गाना.
2: हाँ, हाँ,
0: बिल्कुल ऋतु अनुसार.
1: हाँ, ऋतु अनुसार.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। अब अगला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे पूछ लेते हैं
2: जी,
1: कि आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली पर काफी जोर दिया जाता है
2: जी, जी।
1: तो ये हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंचकर्म क्या है।
2: देखिए, अगर त्रय स्तंभ की हम बात करें,
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं
2: जी जी।
1: हेलो
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और पित्त मेरी प्रवृत्ति है
1: जी,
2: जी।
3: तो पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
2: नमस्कार,
4: नमस्ते
3: जी। मेरे दो मित्र हैं और दो ही मेरे सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा यह कि किसी शख्स से यदि इसकी पित्त प्रवृत्ति है तो क्या उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, होती है? दूसरा मित्र कि जो लोग मैंने सुना है कि अगर माँ के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध पिए या बकरी भैंस का दूध पिए, अन्नप्राश खाएं, तो इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये कहाँ तक सही है? और तीसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि पहले दवाएं वो प्रोड्यूस वो करती है, इन्वेंट वो करती है, डॉक्टर के पास बाद में

0: पहुंचती है वो, तो अगर वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करती है मार्केट में, तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट दवाई खानी सेवन कर लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेके वह दवाई खानी चाहिए? और चौथा अहम सवाल मेरा ये है कि मुझे ना क्या है कि ये लीवर फैटी या अल्सर में से कोई प्रॉब्लम है, और ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, श्वसन एलर्जी, स्किन एलर्जी कुछ हद तक, और निद्रा की प्रॉब्लम है, तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या ये भी इम्यूनिटी का ये पार्ट है क्या, और इसलिए मुझे घर बैठे बैठे क्या करना होगा? और इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ठंड में जाऊँ तो मेरी जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है नेक में और हिप्स में, और अगर गर्म वातावरण में रहूँ तो उससे मुझे निजात मिलती है, पर मेरी पित्त प्रवृत्ति भी है, तो इस असमंजस में हूँ मैं उसे ढोन में, मैं क्या करूँ, प्लीज गाइड करे, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी राजेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि पित्त प्रकृति है आपकी, यानी कि आपकी जो है वो तीक्ष्ण अग्नि हम हो सकती है, और इसमें क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत फास्ट होता है, और इसी में एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि TH1 और TH17 जो है वो टाइप के जो फिनोटाइप हैं वो IgE आपका CRP ये बड़ा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में यदि आपको प्रकृति पता हो तो आप उसको उससे होने वाले जो एक बाय नेचर आपको मिला है तो उसको आगे न बढ़े और वो अलग रोग ना पैदा करें, इसीलिए व्याधि के जो उत्पादक तत्व हैं उनको रोकते हुए खानपान बताया जाता है, और आपकी व्याधि क्षमत्व प्रतिबल जो है, जो सहज बल है, कालज बल है, ये हमारे अलग अलग बल हैं, मतलब सहज जो आपको खुद का मिला हुआ है, का जो माता पिता से आपको प्राप्त हुआ है, आपके इनबिल्ट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन से मिला हुआ है, और कालज में आपके जो ऋतु है, दिनचर्या है, आपका कैसा खान पान है, आप सही फॉलो कर रहे नियमावली आयुर्वेद की, तब आपको इससे तकलीफ नहीं होगी। तो आपने जैसा कहा कि ये आपको जो तकलीफ है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है कि अब आपको वही झेलना है, आपको एक चिकित्सक को सलाह लेनी है, खुद मिलना है, और अपना पूरा एक डाइट प्लान, और आपके लिए मैं आपको बताऊं जो पित्त प्रकृति है उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी हुई तो साइटोकाइनिन जो ये एक इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये फैक्टर, और ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है, तो नींद कितनी आप करते हैं, रात में इरिटेटेड रहते हैं या एसोसिएटेड और भी कोई बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
2: अब हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
2: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
3: मैम को भी नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते
3: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला, सिरोही लोनी जिला का।
2: जी अपना सवाल पूछें।
3: जी मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा कुकिंग हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाता है जैसे, तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इसमें हम जैसे कि घरेलू उपाय में क्या लें, जैसे कि काजू बादाम वगैरह ले लेते हैं, ये चीज ले या ना ले, किशमिश वगैरह, जैसे आप इसके बारे में थोड़ा बताएं।
4: किस चीज की तकलीफ है, किस चीज के कारण वीकनेस ज्यादा हो जाती है आप?
3: जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं,
4: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो ओज धातु की क्षीणता की वजह से ये मसल लॉस होता है, मांसपेशी में जो उसके पोषक तत्व हैं उनका लॉस होता है, उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जो घरेलू उपाय कुछ हैं वो मैं बताता हूं आपको, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और तमाम डायबिटीज़ में होने वाली समस्याओं को, जैसे आप त्रिफला का नित्य सेवन करें। त्रिफला दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो रात में एक चम्मच यानी 3-6 ग्राम की मात्रा में पानी से लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि होने से भी मधुमेह में आपको लाभ होगा। दूसरा, यदि त्रिफला को सुबह आप शहद से या पानी से लेंगे तो ये आपको रसायन के रूप में प्रयोग होगा जो आपकी व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, आंवला का मुरब्बा जो शहद में बना हो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। इसके

0: अलावा हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और सूखी हल्दी का पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको मधुमेह में लाभ होगा। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन काफी आ रही है, तो जामुन खाइए। जामुन के बाद उसकी गुठली निकाल लीजिए और उसे सुखा के उसको पाउडर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा इसमें, डायबिटीज़ में। और ये सारी चीज़ें आपकी जब रोग को कम करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा एक पंचनीम चूर्ण भी आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एंटी डायबिटिक के साथ साथ स्किन की कोई प्रॉब्लम है वर्षा ऋतु में, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उसमें स्वर्ण का प्रयोग है। जैसे वसंत कुसुमाकर रस का हम लोग प्रयोग कराते हैं, जहां एक्सट्रीम डायबिटिक वीकनेस आती है वहां गोल्ड की प्रयोग करने की वजह से आपको तुरंत नर्वाइन वीक में, जो नसों की कमजोरी बताते हैं, वहां पर बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। खान पान में थोड़ा मिठास का कम करके प्राकृतिक चीजें, सीजन में उपलब्ध चीजों का प्रयोग करें, तो आपको आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी, आपके रोग में भी कमी आएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में,
0: जी जी,
1: तो बताएं कि ये पंचकर्म क्या है।
0: देखिए, पंचकर्म जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पांच विधाओं की खोज की गई, जो इसका जो सिद्धांत था कि शरीर को सबसे पास के रूट से गंदगी को या टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो आपके नाभि से ऊपर के हिस्से की टॉक्सिन्स निकालनी है अगर आपको, तो उल्टी करा के सबसे आसानी से निकाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: ये नॉर्मल उल्टी नहीं होती है, हम इसे वमन कर्म कहते हैं, जो पहला कर्म है। और कफ दोष, जो वात पित्त कफ है, इनमें जो प्रधान दोष, एक मेन दोष ऊर्ध्व भाग में ऊपर के हिस्से में कफ दोष रहता है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम स्नेह पान करा के उसको घी पिला के पेशेंट को तैयार करते हैं और फिर वमन कराते हैं।
1: अच्छा।
0: वमन की प्रक्रिया होने से आपका कफ और पित्त दोष, दो दोषों पे हम अच्छा प्रभाव लाते हैं और शरीर को अच्छा है। इसके बाद आता है विरेचन कर्म, यानी नाभि से नीचे के हिस्से में जहां पित्त दोष प्रमुखता से होता है और वात दोष, इन दोनों दोषों को नियंत्रण करने के लिए हम विरेचन कर्म करते हैं। तो दोनों का क्रम है, पहले आप वमन कराएं फिर विरेचन कराएं। दूसरे में नस्य कर्म कराते हैं, बस्ती चिकित्सा वात की शांति के लिए कराते हैं, और रक्त मोक्षण यानी ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार के पांच प्रोसीजर हम कराते हैं। अन्य पैरस प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करा सकते हैं, तो रोगी पे हम करा देते हैं।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, अब सुन लेते हैं एक गाना।
0: हाँ हाँ।

0: अब अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: नमस्ते
1: मेरी उम्र है 70 साल की।
0: जी।
1: पहले तो बधाई आप लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छे आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो। आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज मिली है, क्या क्या चीजें मैं ध्यान से सुनने से। तो
0: जी,
1: तीनों
0: शुक्रिया,
1: को, तीनों आप बधाई पात्र हो, बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि कोई काढ़ा बना सकते हो आयुर्वेदिक उससे, जिससे कि
0: आपने
1: आप
0: अपना
1: जो है।
0: नाम क्या बताया
1: रमेश
0: जी? रमेश जी, एक तो पहली बात है कि आप बीपी के हैं, तो कौन सा टाइप का बीपी है, कितने रेंज में है, ये परीक्षण एक बार एक चिकित्सक से जरूर दिखा लें। और ये बहुत गलत धारणा है कि
1: इसमें
0: बैठे
1: डॉक्टर
0: बैठे
1: साहब,
0: कोई काढ़ा अगर हम बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारी औषधियां हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हैं। आपको
1: नहीं,
0: कौन से
1: डॉक्टर साहब
0: उसकी
1: एक
0: जरूरत?
1: मिनट एक मिनट
0: जी
1: डॉक्टर साहब, ऐसा
0: जी
1: ऐसा था कि जब ये कोविड वगैरह हुआ था तो काढ़ा के बहुत बहुत रेसिपी
0: अच्छा
1: आती
0: अच्छा
1: थी।
0: ठीक है जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसको मेरे को काढ़ा का पहले उस टाइम मैं बनाया करता था, वो मैं भूल गया, मिसप्लेस
0: ओके
1: हो गया है। तो
0: ओके
1: मैं चाहता
0: ओके
1: हूँ कि कोई ऐसा काढ़ा वाला जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो सकती है। बहुत इफेक्टिव था काढ़ा,
0: जी
1: जहाँ तक
0: जी
1: मेरे को याद
0: जी
1: पड़ रहा है,
0: जी
1: तो आप उसमें
0: वो
1: हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी जी वो गिलोय का जो है वो
1: हाँ
0: हम
1: हाँ
0: लोग
1: एग्जैक्टली
0: काढ़ा
1: एग्जैक्टली।
0: देते थे, उसका रोल अलग था। गिलोय की मात्रा और किस तरह से बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रिसर्च
1: ओके
0: से कंसर्न हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जो नॉर्मल आप लोग तोड़ करके कुछ भी, जैसे जरूरत पड़ने पे हम विष को भी अमृत बना लेते हैं, है ना, उसके संस्कार करते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: संस्कार यानी उसकी वो चीजें जो पॉइजनस है उनको हटा के कितनी मात्रा में, कितनी डोज में, किसके साथ, कब, खाने के पहले बाद में, ये सारी व्यवस्था एक चिकित्सक दवाई जब यूज करता है ना तो इसका विचार
1: बिल्कुल
0: करता है। और अगर हमने, मैंने ये बहुत सारे प्रयोग देखे थे, जब काढ़े के बताया गया था तो लोगों ने सारी गिलोय साफ कर दी और ले लेकर के उसमें कई चीजें उनको रिएक्शन भी हुई हैं। इसी तरह जैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुलसी दल, दो तुलसी दल भी जो है सुबह अगर आपने पानी के साथ में
1: ओके
0: उसको निगला तो भी अच्छा है, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाते, वो भी एक दिक्कत है। लोग बोलते चबाने, उससे भी दांतों का आपका इनेमल खराब होता है, उसके जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो खराब कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, आपकी उम्र 70 साल की है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना।
1: अच्छा
0: तो कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा की कितनी मात्रा लेना है, क्योंकि अश्वगंधा कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, लेकिन कई बार बीपी को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर
1: बिल्कुल
0: कोई भी औषध ले रहे हैं, देखिए खाना और औषध में यही फर्क है कि खाना आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लोगे तो वो औषध बन जाएगा, और औषध जो है वो अपने हिसाब से लोगे तो वो नुकसानकारक जो है वो कहीं दवाई आपको और नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मेरी सलाह मानिए, एक चिकित्सक को दिखाना बनता है और उनसे एक बार अपना चार्ट बनवा लें और जरूर लें, लेकिन अश्वगंधा कितनी मात्रा में दूध के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया सुधीर सिंह का, जो कुतुबगढ़ से आया है। वो पूछ रहे हैं कि कुसुमाकर रस कितने दिन तक खा सकते हैं, और ये मलाई के साथ ठीक रहेगा या शहद के साथ?
2: देखिए, वसंत कुसुमाकर रस जो

0: है अपने चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें स्वर्ण जैसी औषधि होती है तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रयोग कराते हैं। शरीर में जितने समय में इसका लाभ आ जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए उतने समय के लिए ही प्रयोग कराते हैं, लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग और उपयोग करें और इसका लाभ ले सकते हैं।
1: और हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
2: मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: और डॉक्टर साहब को भी दोनों को नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी, जी। मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा गांव खुखनिया डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
0: बताइए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं 2002 से दिमाग की दवाइयाँ खाता हूँ और मेरा छोटा भाई है वो 2009 से, उसको सिजोफ्रेनिया और मेरे को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड में हमारा फैटी लीवर आया दोनों का, मेरा ग्रेड 2 है, भाई का ग्रेड 1 है। तो आप ये बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड पे क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त मिल सकती हैं सर कहीं से, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से भी?
0: ये तो देखिए, आयुष्मान कार्ड पे देखिए, ये जो जहाँ भी ये स्कीम लागू है वहाँ क्या व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोकल स्थानीय स्तर पे इसको पता करें, ठीक है। दूसरी जहां देखिए दो समस्या है आपकी, एक लीवर की समस्या है जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ये दोनों भाइयों का पूरी तरह ठीक हो सकता है। और जो आपने अपनी तकलीफ बताई, ये तकलीफ थोड़ा कठिन है चिकित्सा में, लेकिन अगर आप सही चिकित्सक के मार्गदर्शक में आप अपनी औषधियों का उपयोग करते हैं आयुर्वेदिक और पंचकर्म का उपयोग कर प्रयोग करते हैं तो मानस रोगों में लक्षणों को काफ़ी कम किया जा सकता है और आपकी स्थिति को बेहतर सुधारा जा सकता है। बाकी पूरी बात तो आपको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।
3: हाँ, लेकिन आप यहाँ पे त्रिकटू एक होता है हमारा, सौंठ पीपल और मिर्च के से मिली हुई दवाई एक होती है, आपको मिल जाएगी वो, आप एक चुटकी खाना खाने के पहले ले सकते हैं और दोनों के दोनों भाई ले सकते हैं, आप ओसीडी वाले और आप जो दूसरे भाई हैं उनको भी, क्योंकि मेडिसिन जब बहुत दिन तक आप लोग खाते हैं तो उससे लीवर कहीं ना कहीं कुछ उसमें डैमेज होता है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव जितने भी दवाइयां हैं वो आयुर्वेद में बहुत बेहतर हैं। आप किसी चिकित्सक की सलाह से ये आप अपने लीवर को भी ठीक कर सकते हो।
1: डॉक्टर साहब, एक नींद की समस्या
0: जी।
1: अभी स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर बात होनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: लंबी बात होनी चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं जैसा,
0: बिल्कुल।
1: तो आयुर्वेद में इससे निदान पाने का और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का और मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए?
0: देखिए, जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए ना स्वस्थ रहने के, उनमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यानी निद्रा भी एक इतना बड़ा फैक्टर है।
1: हाँ।
0: अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो देखिए उस व्यक्ति की भूख डिस्टर्ब होगी और नींद डिस्टर्ब होगी, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को सोने को सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होगा जिसमें मानसिक लक्षण आएंगे। तो इन सभी समस्याओं में और नींद को सही से लाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल, सरल, सुरक्षित औषधियाँ हैं। कुछ तो आपके आसपास भी उपलब्ध हो सकती हैं। इनमें अगर कोई औषध भी नहीं खानी है तो आप पंचकर्म में शिरोधारा का उपयोग करें
1: जी।
0: शिरोधारा से बिना औषध के आपको निद्रा आ जाएगी। दूसरी है नस्य कर्म। नस्य कर्म जिसमें कि आपके नाक में औषधीय तेलों का प्रयोग करके आपको नींद को हम लाते हैं। तीसरा है कर्णपूरण, यानी अगर आप कान में तेल डालेंगे, क्योंकि कान वात का स्थान है और वात जो है निद्रा को डिस्टर्ब करने में एक प्रमुख कारण बन जाता है, तो उससे भी हमारी वात की शांति से हमें निद्रा अच्छी आती है। तीसरा है पादाभ्यंग, यानी अपने पैरों की मालिश करना, तलवों की, यदि आप सोने से पहले अपने तलवों की मालिश करते हैं इससे भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको नींद अच्छी आती है। तो इन सब प्रक्रियाओं से बिना औषध के भी नींद ला सकते हैं, और अगर आपको औषध की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में। उपयोग करें
3: जी है, इसके साथ में प्राणायाम ध्यान जी, जी. आप ये भी अपना सकते हैं क्योंकि सकारात्मक भावनाएं जो हैं वो काफी हद तक आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं और जिसके कारण आपके जो नर्वाइन जो है वो एक जो कॉर्टिसल लेवल स्ट्रेस के थ्रू आता है जी. वो भी कम हो जाता है और नींद पूरी करेंगे तो साइटोकाइनिन जो आपके लिए जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो भी पर्याप्त मिलता है और एक तो देसी उपाय दादी नानी के जमाने से किया जा रहा है भाई और वो है कि आप एक ग्लास दूध गरम दूध रात में पीना चाहिए यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ और यदि डायबिटिक है तो आप ऐसे ही ले सकते हैं उसमें कई लोग कोई मुनक्के डालते हैं कुछ तो ये एक प्रक्रिया जो है दूध पीने वाली है बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि पादप भंग रात को सोने के पहले यदि किया जाए तो और बेहतर और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग टाइम कम करिए और वो भी आप लोगों को सोने के पहले ये मोबाइल है टीवी है इससे कम से कम आधे पौन घंटे या एक घंटे दूर रहें और फिर देखिए थोड़ा खाने के बाद में वॉक जरूर करें खाने के बाद तुरंत लेट ना जाए छोटी छोटी आते हैं लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो नियमावली है और पूरी लिस्ट है आप किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं लेकिन कुछ तो फॉलो करिए
1: जी जी, जी. तो आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ जाना और हमारे दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम जानकारियां दी. तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: ओम नमो धन्वंतराय बहुजन सुखाय बहुजन हिताय.
0: धन्यवाद.
1: आशा करते हैं कि आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति. नमस्कार. और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा मेल एड्रेस है health@gmail.com.
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने पुलिस को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष मंत्रालय में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसे कालजयी कृतियों की रचना की। अजरबैजान के बाकू में कल अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी से, लाइव स्ट्रीमिंग, न्यूज ऑन एआईआर ऐप जैसे अन्य कई माध्यमों से भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। साथ ही आप हमें वेब्स प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी सृजन प्रोग्राम अल्फा जेन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन उससे पहले 4:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। जी हाँ, और उसके बाद कार्यक्रम रहेगा सिटी लाइट्स। इस कार्यक्रम को 5:02 से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम 6 तक रहेगा और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी विनीता बेदी। साथ ही अगला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे साथ 6:02 पर। इस कार्यक्रम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स। रमा यादव इस कार्यक्रम को आप सभी के लिए लेकर आएंगी। और उसके बाद समय रहेगा, जी हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक आर है 7:02 पर। लिपिका लेकर आएंगी आपके लिए कार्यक्रम फ्राइडे फिएस्टा। इस कार्यक्रम के ठीक बाद 8:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जहां पर आपको नॉन स्टॉप डांस हिट सुनने को मिलेंगे। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रमा यादव। 9:02 पर आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से प्रस्तुत किया जाएगा आपके लिए कार्यक्रम आपकी याद आती रही। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे विकास कौशिक, तो विकास के साथ सुनिएगा जरूर इस कार्यक्रम को। और उसके बाद 10:02 पर लिपिका एक बार फिर लेकर आएंगी आपके लिए वेस्टर्न म्यूजिक आर वीकेंड। 11:02 पर रंगे महफिल आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा विकास।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल
निकाल पाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधा देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज ए मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं, ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम अल्फा जैन लेकर मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस्टर जैन। और हाँ जी, फ्राइडे आ चुका है, तो चलिए बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। वीकेंड स्टार्ट हो गया है सैटरडे संडे की, आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर ली होगी। तो अभी जब आप ऑफिस से घर के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, आपको ट्रैफिक नियमों का खासा ख्याल रखना है। घर पहुंचिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और फिर बोलिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। चलो कल सैटरडे है, फिर संडे होगा और एक बार फिर मंडे की तैयारियां। तो चलिए बात करते हैं आज भी कुछ डिफरेंट। आज मैं बात करने जा रही हूं बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन देखिए हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। अगर हम कोशिश करें तो भी ऐसा लगता है कितना टफ है ना। आपने वो तो सुना ही होगा ना कि पानी का ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि हम किस नज़रिए से उसे देख रहे हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब यही है कि चीज़ों पर फोकस करना, लाइफ चाहे जैसी भी चल रही हो नेगेटिव थॉट्स को ना बिल्कुल दूर रखना है, आउट रखना है, और अपनी मेंटल हेल्थ को लंबी सांस भरिए और बोलिए मैं हूँ पॉजिटिव नंबर वन। तो क्या क्या कर सकते हैं आप पॉजिटिव रहने के लिए, इस पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। अगेन न्यू टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार उन टॉपिक्स को उन विषयों को रिवाइज करने से हम किसी गलत ट्रैक पे जा रहे होते हैं ना, वापस आ जाते हैं और ठीक सिचुएशन में होते हैं। और यकीन मानिए खुश रहने का मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ ठीक है, पर ये ज़रूर है कि हमने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो चलिए इसी बात पर पार्टी तो बनती है।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ यस दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन। बात कर रहे हैं अल्फा जेन में। आज हमारा टॉपिक है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। देखिए, इस लाइन को लिख कर ना आप अपने ऑफिस टेबल पर चिपका लीजिए, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर चिपका लीजिए, सबसे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल पर भी लिख दीजिए बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, अपनी वाटर बॉटल पर लिख दीजिए। जितना इस बात को ध्यान में रखेंगे ना, उतना आप कूल रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। आप जैसे किसी गलत अब तो ये तो ऐसा वैसा जैसे किसी गलत ट्रैक पे जा रहे होंगे ना, वो हिट करेगा और आप आ जाएंगे वापस ऑन द ट्रैक। तो चलिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए एक टिप मेरा ध्यान में रखिए, आपको ग्रैटिट्यूड जो है अपना शो करना है, आभार व्यक्त करना सीखिए। आपको जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आप अपने पेरेंट्स, ईश्वर, अपने दोस्तों के, अपने आसपास वालों के लिए जितना हो सके आपको अपना आभार व्यक्त करना है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए भी करना है। अपने आप से कहिए, जैसे मैं भी कहती हूँ सृजन आप तुमने ना बहुत अच्छा करा, चलो तुम्हें पार्टी देती हूँ, तुम्हें गोलगप्पे खिला लेती हूँ। तो ऐसे ही अपने साथ भी कीजिए ना, अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपने फील किया, तो ये कहिए कि नहीं चलो तुम्हारी पार्टी की बारी है, अपने आप को पार्टी देना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए। देखिए जब इतनी चीज़ें आपके आसपास पॉजिटिव हो रही होंगी ना, तो वो जो नेगेटिव ख्याल आ रहे थे ना, ये अपने आप ही आउट हो जाएंगे। तो ट्राई कीजिए। और हाँ, शुक्रवार है आज, शुरुआत हो रही है वीकेंड की, इसी स्माइल के साथ घर जाइए। ऑफिस की ये जो टेंशन है, ये जो सर आपका दर्द हो रहा है ना, इसको यहीं छोड़ दीजिए, बस मंडे देखेंगे। लेकिन अभी तो तैयारी कीजिए खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस आते हैं, अपनी बातें करेंगे और साथ साथ मेरा पूरा इंतजाम है आपको नचाने का। सुनते रहिए रेनबो

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: वेल, नो डाउट ये एक बहुत अच्छा तरीका है बिंदास बोलना। जो दिल में है वो कह दीजिए। दिल में बातों को रखना भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को सीधा सीधा इनविटेशन है। अपने दिल की बात आप हमसे भी कह सकते हैं और ज़रूर बताइए हमारे प्रोग्राम्स के बारे में भी कि कैसे लगते हैं। कोई भी फीडबैक सर आँखों पर है जनाब। सुनते रहिए रेनबो।

थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से. मैं हूं आपके साथ दिल से दिल तक सृजन जी. अगली बात करते हैं. हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं पहले वो तो दोहरा दूं. हम बात कर रहे हैं बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक रहने की. तो आप अपना अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाइए. जी हाँ, कहते हैं ना, हम अपने क्रिएटर भी खुद बन सकते हैं. हम लाइफ को जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं. अपने सृजनकर्ता बनने के लिए आप कुछ कुछ प्रयास कीजिए. अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए जो सीधी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है. क्योंकि लाइफ में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है. इसलिए आर्टिस्ट बनिए, वो आर्ट सीखिए जो जिंदगी में आपको खुशी खुशी आगे बढ़ाने वाली है. और देखिए अगला टिप, संगत की रंगत चढ़ती है ना. चढ़ती है. अब हमेशा ही आसपास जितने भी आपके बैठे हैं साथ में फेलोज, वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं. कभी कोई घर परिवार की अपनी नकारात्मक बात बता रहा है, आपने गेन कर ली, फिर आप उसको जाके अपने घर पर रिएक्ट करते हो. तो ये जो ऐसे प्रोसेस वन वन

मन चलता ही चलता चला जाता है, तो इसको ब्रेक कीजिए। अपने आसपास कैसे लोग होंगे उसे चूज कीजिए, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, इसका सीधा सीधा असर आपके सोच पर पड़ रहा है, आपके ब्रेन पर पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जो पॉजिटिव बातें करते हों, जिनके साथ रहकर आपको पॉजिटिव वाइब्स फील होती हो ना, उनके साथ रहना पसंद कीजिए। इंस्टीड ऑफ जो भाई हर टाइम लड़ाई वड़ाई की बातें कर रही है ना, उनसे जो है आप दूरी बना लीजिए। सावन का महीना है, चूड़ियाँ जो है खनक चुकी हैं, चलिए एक हरी साड़ी भी ओढ़ लेते हैं, क्यों गर्ल्स।

0: साड़ी थी ना, चाहे गुलाबी हो या हरी, आप तो माशाल्लाह हर चीज में खूबसूरत लगती हैं। ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, यकीन मानिए, पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को आप चूज कीजिए, मैं ऐसे परफेक्ट हूँ, मैं आज ये पहनूंगा पहनूंगी, मैं अच्छी लग रही हूँ। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चलिए, ये भी अपने आप में सकारात्मक रहने की निशानी है। सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कमिश्नर 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। बात कर रहे हैं बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक कैसे रहें। आई एम श्योर मेरी टिप्स कहीं ना कहीं आपको गुदगुदा रहे होंगे, लेकिन आपको जीवन में, लाइफ में इसे कैसे इनहेल करना है, कैसे इसको एग्जिस्ट कराना है ना, ये आप तैयारी कर रहे होंगे। और एक और चीज़ जो करनी है ना आपको, ये भी मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मतलब आपको क्या करना है, अपने जो अभी चल रहा है करंट, बिल्कुल राइट नाउ, इसी में जीना है, वर्तमान में जीना है। पास्ट की बात क्या है, मैंने बचपन में कुछ ऐसा होते देखा, पेरेंट्स का ये देखा, मेरे साथ ये हुआ। कब तक आप उन पुरानी चीज़ों में उलझे रहेंगे, उस पास्ट को पास होने दीजिए और अब प्रेजेंट की बात करते हैं। मुझे तो ये जीना है और अपना फ्यूचर पॉजिटिव करना है और बेहतर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी उन बातों को बार बार दोहराएंगे, किसी के सामने दोहराएंगे, सामने वाला ज़रूर आपको सिंपैथी दे सकता है, ओ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, वो बातें फिर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं ना, तो उसको आउट करना है। अभी करंट में जो है ना उसमें जीना है, शांत रहना है और अपने जो ये स्ट्रेस है ना इसको भी किक करना है कि भाई तुम तो जाओ, स्ट्रेस की मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो साड़ी वाड़ी जो अब तैयारी की है पहनने की, तो कमरिया पर इसको कस लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जिंदगी को खुल कर जीते हैं।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. अल्फा जैन सुन रहे हैं आप. बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, ये हमारा मोटो होना चाहिए. यही हमारा आज का टॉपिक भी है. मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी कुड़े सृजन. तो आपको क्या करना है, रीफ्रेम करना है. नेक्स्ट यही है, रीफ्रेम कीजिए. मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना. हमेशा नेगेटिव एंट्री, नेगेटिव जो थॉट्स हैं ना, उनकी एंट्री होती रहेगी. लेकिन वो जिस साइड से इन हो रहे हैं ना, उन्हें उसी साइड से आउटडोर दिखा दीजिए. वही रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है. वो बातें याद करनी शुरू कर दीजिए जो सोच कर आप मोटिवेट होते हैं, जो सुनकर आप मोटिवेट हो रहे हैं. वो रिकॉर्डिंग अपने कानों में प्ले कर लीजिए. वो गाना हो सकता है, वो किसी की कुछ वर्डिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको पॉजिटिव करता हो. जैसे ही आ रहे हो ना, वो नेगेटिव इन हो रहा हो, वैसे पॉजिटिव को इन करना है, उसको आउट कर देना है. तो आसानी होती है उन्हें दूर रखने पर और फोकस करने में कि आपको आगे जाना है. और एक चीज़ ना आप अक्सर अपने साथ करते हैं, मैं भी करती हूँ कई बार, लेकिन फिर हमें नहीं करना है ना, क्योंकि हम बातों को दोहरा ही तो रहे हैं. ठीक है, नहीं करना है. अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए. कब तक हम अपने आप को बोलते रहेंगे कि हमारी वजह से, मेरी वजह से ये हुआ, हमने ऐसा कर दिया, मैंने अगर ये नहीं किया होता तो ये हो जाता. तो बस कीजिए, अपने प्रति भी थोड़ा दयावान होना सीखिए, अपने पर दया कीजिए. जब खुद को हर बात के लिए जिम्मेदार मानना छोड़ देंगे, तो कुछ ना कुछ जो नेगेटिव आपके अंदर अब रहा था ना, वो आउट हो जाएगा, पॉजिटिव इन होगा. तो अपनी गलतियों से सीखिए. और ये भी कहिए कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों से आगे बढ़कर सही होना ही लाइफ है.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आप सुन रहे हैं रेनबो, ये कलरफुल रेनबो, और हम आपके साथ हैं। जी हाँ, हम मतलब हम आरजे एक आते हैं एक जाते हैं, लेकिन आपके लिए वो सफर वो साथ जो आपकी यादों में भी रहता है और हमारे साथ भी बना रहता है, छोड़ जाते हैं। मैं हूँ सृजन। तो चलिए, हम पॉजिटिव रहने की बातें कर रहे हैं तो कुछ और बातें। देखिए, आपका क्या है और मेरा भी है, हमारा क्या है, हम ना बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो

करूंगा, लेकिन जब वो पूरे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जो हमारे गोल्स हैं, हमारे लक्ष्य हैं ना, उनको ब्रेक कर लेना है, छोटा छोटा छोटा छोटा। मतलब मान लीजिए आपको कोई एग्जाम, बड़ा एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले आप अपने उन छोटे छोटे एग्जाम्स को ही टारगेट बना लीजिए। मान लीजिए मुझे ट्वेल्थ करनी है इतने परसेंटेज से, मुझे ग्रेजुएशन करनी है 100% से, मुझे मास्टर्स करनी है, और फिर मुझे ये बनना है। तो क्या हुआ, हमने ब्रेक कर लिया है ना। वो जब भी हमारी एक अचीवमेंट, एक स्टेप की तरह हमने क्रॉस की ना, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देगी। वो गोल्स जो कि पॉसिबल हो, जल्दी पार किए जा सकते हो, उन्हें तोड़ तोड़ कर कीजिए, क्रॉस कीजिए, और आप जो है पॉजिटिव फील करेंगे। कुछ ऐसा जो कि आप बहुत बड़ा आपने फिक्स कर लिया है, बस उसी को लिए जूझ रहे हैं, जब वो नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल कि अब तो बस मैंने सब छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसे आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ रहना है, अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रहना है।

9876543211। जैसे ही गुस्सा आए ना, ये उल्टी गिनती दोहरानी शुरू कर दीजिए, आप थोड़ा बेटर फील करेंगे, थोड़ा और बेटर फील करेंगे और ये नेगेटिविटी आउट हो जाएगी, यकीन मानिए। एक लास्ट टिप ऑफ द डे मैं आप सभी को देना चाहूँगी, माफ़ कर दीजिए। कितना बोझ लेकर चलेंगे मन पर, गुस्सा जो है थूक दीजिए, आप माफ़ करने की आदत बनाइए। जब आप माफ़ करते हैं ना, तो आपका भी दिल साफ हो जाता है, हल्का हो जाता है ना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पॉजिटिव रहने का। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, मैं हूँ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन, दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर लीजिए प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया। उच्चतम न्यायालय ने डीएमके नेता और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के नए मामले में अगले आदेश तक अग्रिम जमानत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की। कर्नाटक से मालदीव के लिए नीलम और तोतापुरी आमों का हवाई जहाज से होगा निर्यात। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने शुरू की आमों की पहली हवाई परिवहन सुविधा। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में फाइनल में जगह बनाई। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो के कार्यक्रम सिटी लाइट्स में स्वागत है आप सभी का मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। झील मिलाते रोशनी और मुस्कुराते चेहरों वाले शहर दिल्ली में आप हैं सिटी लाइट्स के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त विनीता बेदी और राजधानी दिल्ली की रफ्तार, नई हलचलें, कई बड़े आयोजन और दिन भर की ढेर सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां लेकर एक बार फिर से हैं हम साथ साथ। आइए करते हैं शुरुआत आज की ढेर सारी खबरों से भरे प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। कैसे हैं आप, ये तो मैंने पूछा ही नहीं।

मैं हूँ तो मिल ही गए तो क्यों ना बातें करें ढेर सारी, आप कुछ अपनी और मैं कुछ अपनी। लेकिन फिलहाल जो एक कॉमन बातें हैं ना जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रही हैं, वो है मौसम की मार। एक्चुअली हम दिल्ली वाले ना हर मौसम को ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि जीते हैं, और कुछ लोग इस जीने को झेलना भी कहते हैं। आप उनमें से तो नहीं है ना? Why I'm saying this? अरे सिर्फ इसलिए, अब जैसे जब बहुत गर्मी होती है तो हम कहते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी, बहुत ठंड होती है तो हाय सर्दी, बहुत बारिश होती है तो उफ़ या बारिश, क्या किया जाए। हर मौसम में हमें कोई ना कोई शिकायत रहती है, लेकिन उस मौसम के बगैर आ भी नहीं जाता। कितने दिन से हम बात कर रहे थे कि बारिश ही नहीं हो रही, और अब हो रही है तो हम परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं घर से निकलना है और छतरी घर पर रह गई है, या फिर हम भीग गए हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको भी लगता है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि मौसम की ये सक्रियता दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है और अभी बनी रहेगी, यानी अगले एक दो दिन तक हल्के से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। मौसम सुहावना रहेगा लेकिन उमस भी महसूस होगी, तो अगर आपको सुहानेपन की तलाश है तो उमस एड ऑन है, यानी 1+1 है ना। तो ऐसे में आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट कि घर से निकलते हुए छाता बैग में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मौसम है बारिश का, कभी भी बरस सकती है, राइट? तो एक और चीज़ मुझे आपको याद दिलानी थी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ जहाँ कहीं भी पानी हो, क्योंकि कई बार सड़क के किनारे या गड्ढे में पानी हो जाता है, उस पर जब हम जूम करके गाड़ी निकालते हैं ना तो आसपास के लोगों पर बिन मौसम बौछार हो जाती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी अगर आपको मौसम की खूबसूरती देखनी है तो आजू बाजू वालों की आंखों में देखिए ना कितना गुलाबीपन छाया हुआ है, देखिए देखिए अच्छा लगेगा।

दोस्तों सिटी लाइट सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और आपको पता है दोस्तों, कल से यानी 30 तारीख से 31वें गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो और पहली बार आयोजित पेपर वर्ल्ड दिल्ली का शुभारंभ हो गया है। ये आयोजन 1 अगस्त तक चलने वाला है भारत मंडपम में। याद है ना आपको, दिल्ली का भारत मंडपम प्रगति मैदान में। दोस्तों इस आयोजन में देश विदेश के 850 से अधिक प्रदर्शक, 6000 से ज्यादा ब्रांड और लगभग 30,000 प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। गिफ्टिंग, स्टेशनरी, पेपर, ऑफिस सॉल्यूशंस, यानी इन सब फील्ड से जुड़े उद्योगों के लिए देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक आयोजन माना जा रहा है। और अगर आपने अभी तक यहां जाकर नहीं देखा तो भाई बहुत कम समय है। आज 31 तारीख तो हो ही गई है, कल यानी 1 अगस्त तक ही ये है। तो अगर टाइम मिले तो चलिए भारत मंडपम चलते हैं, मजा आएगा। क्या बोलते हैं?

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं दोस्तों विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल

0: जीरो आया, आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सिटी लाइट्स में आप हैं विनीता बेरी के साथ। और अगर सच सच बताऊं तो अगर आप घूम लिए प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां पर चल रहा है गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो और पेपर वर्ल्ड दिल्ली, तो फिर एक और चीज तो वहां पर देखने लायक है। भारत मंडपम में कल से शुरू हुआ है TOI स्पोर्ट्स फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में खेल अवसंरचना, फिटनेस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और खेल उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ सब एक ही मंच पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के खेल ढांचे को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो अगर हो सके तो यहां भी एक चक्कर लगाते ही आइए, TOI स्पोर्ट्स फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026 प्रगति मैदान भारत मंडपम में। और फिटनेस से मुझे याद आया, दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वॉच में अपने कदम गिनकर ही अपने फिटनेस को पर्याप्त मान लेते हैं? अगर आप उनमें से हैं, अगर होंगे नहीं मुझे पता है, तो फिर आपको ये बता दूं कि सिवाय वॉक करने के और भी बहुत गम है जमाने में, वो भी कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी डॉक्टर्स कहते हैं। बाकी आप तो अपने काम में लगे रहते होंगे, मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, आप फलाना, आप ढिमकाना, आप ये। अरे वो सबको पता होता है कि हमें उनकी बॉडी के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं। एक बहुत जरूरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, इनफैक्ट जो मैं फॉलो करती हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, दैट इज खाने का बहुत ध्यान रखें। यानी ईट हेल्दी थिंक हेल्दी, है ना, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना हमारा शरीर वैसा ही बनता है। बचपन में मम्मी कहती थी, अब मैं सबको कहती हूँ, आपसे भी शेयर कर लिया, राइट?

दोस्तों, जब वेलकम कर ही दिया आपको तो कुछ अच्छी जगह बताती हूँ, क्योंकि वीकेंड आ रहा है और इस वीकेंड में अगर आपने थोड़ी बहुत घूमना फिरना मौज मस्ती नहीं की तो फिर वीकेंड का फ़ायदा क्या? 5 दिन कितना दबा के काम करते हैं हम लोग सारे के सारे। दिल्ली की शाम है ना दोस्तों, इस वक्त इन दिनों इनफैक्ट मौसम की नर्मी के साथ साथ और भी सुहानी ही हो गई हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। ऐसे में इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और सुंदर नर्सरी जैसी जगहें जो है ना, वो फैमिली और युवाओं की बहुत ही पसंदीदा जगह बनी हुई है। शाम के समय यहाँ टहलने और खुले वातावरण का आनंद लेने बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? अरे जगहें बहुत सुंदर हैं, आप इंडिया गेट में देखिए कितनी देशभक्ति की भावना जाती है। कर्तव्य पथ पर चलिए, लगेगा जैसे आप ही देश को बदलने का जज्बा रखते हैं मन में। और अगर फूलों से प्यार है तो सुंदर नर्सरी कैसे नहीं जाएंगे आप? जाकर देखिए, फैमिली भी खुश हो जाएगी। कभी कभी कुछ ना करना और सिर्फ आसमान को देखते रहना, फूलों की सुगंध लेते रहना, वो भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। लेकर देखिए, अच्छा लगेगा।

अरे क्या हुआ ये मत पूछिए, कैसे हुआ ये पूछिए, क्योंकि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा ना तो आपको जवाब भी हमेशा अप्रोप्रिएट मिलेगा। बहरहाल क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो आपके साथ ये शेयर करूं कि दिल्ली में डिजिटल भूमि अभिलेख की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में डेली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां यानी रेजिडेंशियल और कमर्शियल जितनी भी संपत्ति हैं उनका डिजिटल सर्वे किया जाएगा और हर एक संपत्ति के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की योजना है। दरअसल इसका जो बेसिक एम है, जो इसका उद्देश्य है, वो भूमि अभिलेखों को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। सो ये बहुत जरूरी है कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगी हर स्कीम, उतना ही ज्यादा हमारे लिए यानी कि सिटीजन्स होने के नाते हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा और जो बीच में कई बार दिक्कत होती है कैसे करवाएं कहाँ करवाएं वो सब भी समस्याएं सारी की सारी समाप्त होंगी और ज़्यादा स्मूथ रहेगा प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लगता है बहुत ही बेहतर कदम है।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स में अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, महिलाओं के लिए एक खास खबर है कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मिलने वाली फ्री पिंक टिकट व्यवस्था को फिलहाल 15 अगस्त तक जारी रखने की तैयारी में है। नई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना लागू होने में कुछ और समय लगने की वजह से ये जो अंतरिम व्यवस्था है ये जारी रहेगी ताकि महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो फिर हैं तैयार आप भी बसेस में ट्रेवल करने के लिए? दिस इज व्हाट आई मेंट।

अच्छा चलो, जब आने की बात हो ही गई है और आपको बुला ही लिया गया है, तो आपको मैं बताती हूँ कि जनपथ में ना वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव चल रहा है। अगर आप इस सप्ताह कुछ अलग देखने की योजना बना रहे हैं, इस वीकेंड को कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं, तो जनपथ में स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव 7 अगस्त तक चल रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर की 116 से अधिक पारंपरिक हथकरघा बुनाई शैलियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आयोजन जो है ना दोस्तों, ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एंड आई पर्सनली फील कि अगर कभी आपका मन करे कुछ अलग हटके देखने का, तो ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। आपको अपनी कला, अपनी संस्कृति की पहचान यही मिलेगी।

चलिए दोस्तों, चलते चलते एक और एग्जीबिशन की खबर आपको दे देती हूँ। कला प्रेमियों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी है नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में, दैट इज मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स। इस नाम से ये जो कला प्रदर्शनी है ना, ये दर्शकों को बहुत ही आकर्षित कर रही है। इस एग्जीबिशन में प्रवासी कलाकारों की रचनाओं के माध्यम से पहचान, स्मृति और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे विषयों को अभिव्यक्त किया गया है। जितने भी आर्ट लवर्स हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस हो सकता है ये एग्जीबिशन देखना। तो अगर आपका बने मौका तो भूलिएगा मत कि न्यू दिल्ली के बीकानेर हाउस में ये एग्जीबिशन है, मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स। तो भाई आपका क्या प्रोग्राम है पता नहीं, लेकिन मैं तो चलिए एग्जीबिशन देखने। फिलहाल विनीता बेदी को दीजिए इजाजत आज का सिटी लाइट्स यहीं समाप्त करने की। मिलेंगे बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल इस सपने लिए एग्जीबिशन के साथ ही आपको कहती हूं मैं बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। इस पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कल रात 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई परिवहन की सुविधा प्रदान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग में एक कोयला खादान में मीथेन गैस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। उड़ीसा में महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की है। अजरबैजान के बाकू में कल अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजी प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाज अंकुश पंघाल भी 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि मुझे मैसेज मसाला मिक्स का बहुत इंतजार रहता है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा मसाला जो है वो मिक्स कर सकते हैं, मैसेजेस आपके होते हैं, मसाला मैं लगा देती हूँ, बन जाता है कुछ प्यारा सा। लेकिन पहला ये गाना आज की जो शाम है उसके मूड को ध्यान में रखते हुए कुछ लग रहा है कि ऐसा चलाया जाए तो शाम और खुशगवार हो जाएगी। आप मैसेजेस करिए 9868107070 पर। लाख चाहकर भी मैं इस टॉपिक को बदल नहीं पाई, टॉपिक वही है। सावन आ गया है, सावन के साथ कुछ त्यौहार भी आएंगे, तो मुझे लगा आजकल कम मिलना होता है तो सावन और त्यौहारों की ही बात क्यों ना करें। तो भेज दीजिए अपने मैसेजेस 9868107070 पर। मैं रमा हूँ आपके साथ।

मैसेज मसाला मिक्स है ये, और मैं हूँ रमा। बातें करनी है आपसे ढेर सारी, मैसेजेस पर करनी है, मैं जानती हूँ। और मैसेज आप ही भेजोगे, क्योंकि जब आप कुछ मैसेजेस भेजते हैं और वो मैसेजेस जब हमें मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुशी का जो है ना समा होता है। और उन मैसेजेस में जो आपकी बातें होती हैं, उसमें थोड़ा सा बातें अपनी हम भी शामिल कर देते हैं, और फिर इस तरह से बन जाता है वो मैसेज मसाला मिक्स। तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ मौसम जब बदलता है, और जिस तरह से इनके नाम रखे गए हैं ना महीनों के, वो कुछ तो खास है कि हम भी बदल जाते हैं, हम भी जैसे वही हो जाते हैं, या हमारा दिल भी उस हिसाब से बदल जाता है। और कुछ ऋतुओं का असर जो है वो व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। तो सावन की ऋतु कुछ एक ऐसी ही होती है, दूसरा दिन है, सभी अपनी अपनी तरह से मना रहे हैं, कोई

झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप भी इसी तरह के मैसेजेस जो है मुझे भेज रहे होंगे, मुझे मैं ऐसा सोच सकती हूँ। मैं जल्दी से पढ़ूंगी, अभी पढ़ नहीं रही हूँ। इसके इस वाले गाने के बाद मैं आपके मैसेजेस लेना शुरू करूँगी। और झूले नहीं झूल रहे होंगे तो मन में हिचकोले तो खा ही रहे होंगे। बस ये है कि थोड़ा सा जब इसके साथ ये भी जोड़ दें कि हम उम्र के एक दूसरे पड़ाव पर जाने लगते हैं तो चीज़ें पहले वाली नहीं रह जाती, हमें उन चीज़ों में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ता ही है। और तब याद आता है ना कि जो बड़े कहते थे वो कितना सही कहते थे। तो सारा कुछ गड्ढमड्ढ है। आप चाहें तो किसी भी विषय पे, किसी भी विषय मतलब कि सावन के मायने आपके लिए उम्र के साथ कैसे बदल गए। हो सकता है 5 साल के हो तो कुछ और रहे हो, 10 साल के रहे हो तो कुछ और हो गए हो, 15, 20, 25, 30, और इस तरह से उम्र के पड़ाव पार करते हुए आज आपको कैसा लगता है। 9868107070 पर भेजना है आपको संदेश मुझे। मैं हूँ रमा।

मैसेज मसाला मिक्स है ये, और मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूँ रमा साथ आपके। जो बुझ गए थे राह में चिराग जल दिए, अंधेरे बचा के दामन चुपचाप चल दिए। मैंने तापिस से दूर मांगा था एक पल, और तुमने तो मेरे दोस्त मौसम बदल दिए, मौसम बदल दिए। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारा शो सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा लगता है उन्हें हमेशा हमारा शो सुनना, और हमें भी आपका मैसेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये मैसेज है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और लिखते हैं कि नमस्ते करते हैं। सावन आया, हरियाली लाया, खुशहाली लाया, दिवाली लाया, क्या बात है। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो, और आप का भी जीवन जो है बहुत शुभ हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ये जो मैसेज है, नमस्कार कह रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं दुकान पे बिज़ी होने से कैसे भी त्यौहार में नहीं जा सकता। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपको चाहे बिज़ी हैं चाहे कुछ हैं, पर त्यौहार में तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से और उत्साह मिलेगा। कांथा से मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं, गुड इवनिंग रमा मैम, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, और वेलकम कर रहे हैं मेरा, आपका भी वेलकम है। मैसेज मिक्स शो का पहला ही सॉन्ग आपने बहुत लाजवाब बजाया, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। गाने खूबसूरत हैं, गुड इवनिंग जी। विजेंद्र गहलोत लिख रहे हैं अकोला महाराष्ट्र से, मैसेज मसाला मिक्स एंजॉय कर रहे हैं। सावन के महीने में हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आम्रवती में जा रहे हैं ये, और गाने अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है। मैंने तो कहा है कि हर तरह का कुछ भी मैसेज जो है कि कैसे उम्र के साथ सावन के मायने बदले, ये भी आप लिख सकते हैं। सत श्री अकाल लिख रहे हैं, आपका फिर से वेलकम लिख रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, तीज आएगी और रक्षाबंधन आएगी। प्रदीप सलूजा जो हैं वो हमें मैसेज भेज रहे हैं, रमा जी शुभ संध्या, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक, सावन की बारिश, कागज की किश्ती, चारों तरफ हरियाली, झूले, गलियां, घेवर और चाय, साथ में पकौड़े, ये सब महसूस कर रहे हैं। रवि जोशी मेरठ से हमको लिख रहे हैं। तो और सरफराज आलम एक कविता भेज रहे हैं, जोगीहाट दर्शनिया बिहार से। सावन की सरगमे जब गूंजे, धरती ओढ़े हरित श्रृंगार, तीज राखी नाग पंचमी से महके जीवन का हर द्वार, रिमझिम बूंदे प्रेम बरसाए, मन में जगे नया उल्लास, ऋतु और उत्सव साथ मिले तो फिर तो क्या ही आ जाए बहार। और अब हैं बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अल शिफा अंसारी। रिमझिम फुहारों के साथ जब धरा पर सावन उतरता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि हर मन झूम उठता है। सूखे पत्तों की जगह नई हरियाली का आना ये सिखाता है कि जीवन में बदलाव और नई शुरुआत हमेशा संभव है। आइए सावन अपने भीतर की सकारात्मकता को भी पल्लवित करें। आप सभी को आकाशवाणी रेनबो की संगीतमय तरंगों के संग सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाप रे क्या लिख दिया आपने, इतना सुंदर हिंदी। इस सावन के महीने में सब कुछ होता है, कोई उपवास रखता है तो कोई रामायण करता है, बात तो आपने बिल्कुल ठीक लिख दी। और कोई खाने पीने में भी इतना सब खूब बनाते हैं और खूब खुशबू आती है। सोनू दीपू चारू मयंक जियांसी लिख रहे हैं, और अभी तो मैं इतने ही मैसेज लूँगी, और मुझे लगता है

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: स्थिर रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: तो ये है मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में आपका और हमारा साथ है, रहेगा, था और बना रहेगा ऐसे ही इसी तरह से। मैसेजेस आपके पढ़ूंगी, मुझे लगता है उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक और ले लेती हूँ।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

बिल्कुल, ये है रेनबो, मैं हूँ रमा और साथ में है हम मैसेज मसाला मिक्स। मैसेजेस की सौगात आपकी जो है वो आ रही है हम तक। राजकुमार के संतानिया कोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं गुड इवनिंग और वेलकम कर रहे हैं, हैप्पी बारिश रिम झिम और मोबाइल बर्थडे। मोबाइल बर्थडे क्या होता है? अच्छा, आपका बर्थडे है तो आपको हम विश कर देते हैं कि बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। और ये मैसेजेस है गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सावन का महीना आते ही सब कुछ पावन सा लगने लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, हर तरफ हरियाली छाई है, आसमान में बादल काले काले, मौसम बहुत अच्छा रहने लगा है, सावन का सोमवार का व्रत, भोलेनाथ की भक्ति और ये सारी चीज़ें जो हैं होती चली जाएं बिल्कुल और हम करते चले जाएं। आई लव सावन का महीना, प्लीज़ स्क्रीन पर मत पढ़ना या सिर्फ आपके लिए, ओ माय गॉड कौन सी चीज़ मेरे लिए, ठीक है। कंचन सोनिया विहार से, थोड़ा सा मैंने खा लिया जो मेरे लिए था, मैं पढ़ लूँगी बाद में। गुड इवनिंग रमा जी, गाने की प्लेलिस्ट तो अच्छी है, ये तो प्लेलिस्ट अच्छी है, लेकिन विजेंद्र जी सावन कैसे मना रहे हैं ये तो लिखिए। मैसेज मसाला मिक्स, जय हिंद जय भारत। इकबाल राय गुलाटी पीपली कुरुक्षेत्र से, हम बचपन में सावन के महीने में बरसात में नहाने चले जाते थे, क्या बात है। हमारे मोहल्ले में एक मित्र विक्रांत गौतम सेवानिवृत्त हैं, आज उनका इंतज़ार कर रहे हैं और रेनबो भी सुन रहे हैं। राजेश भल्ला लिख रहे हैं ये वाली बात, तो विक्रांत जी को बहुत शुभकामनाएँ और आपको शुभ संध्या। इसके अलावा ये जो मैसेज आया है ये लिख रहे हैं मोहल्ला हलवाया इन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, आपको मेरा सलाम, कैसी हैं आप रमा जी, आपका स्वागत है। सावन का मौसम आया है, पेड़ों पर झूले पड़ गए हैं, हर तरफ हरियाली है, मौसम सुहाना हो गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ खास तो बताइए, मैं तो ये जानती हूँ कि हर मौसम में जो ऋतु है ना उससे हमारा प्यार बढ़ता चला जाता है। कहते हैं ना कि रुत बार बार आ जाती है लेकिन बीते हुए लम्हे नहीं आते, लेकिन वो रुत जो है उन बीते हुए लम्हों की हमको फिर से याद करा जाती है। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिख रहे हैं, जब हम 8 या 10 साल के थे सावन का महीना था, बाग में बैठे थे, धीमी बारिश पड़ रही थी, सामने बाल्टी में आम थे, परिवार के साथ आम खा रहे थे। सच में ये यादें ऐसी हैं ना जो आ जाती हैं तो फिर बस मैं भी उन्हीं यादों में मुझे लगता है तैर रही हूँ, और ये यादें ही तो जीने का आधार है ना।

0: कहते हैं कि ऋतुओं का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आती हैं, और आती हैं तो उनके साथ वो बीते हुए जो लम्हे हैं ना वो भी चले आते हैं, दस्तक दे जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। और फिर ऐसा लगता है, एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि पहले तो खालीपन लगता है, लेकिन फिर लगता है कि वो लम्हे कहीं गए नहीं, वो हमारे साथ ही तो है। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब आपके साथ भी होते हैं ना यहाँ पर, तो लग रहा होता है कि इतने वर्षों का जो साथ है ना वो सावन में साथ साथ चलते चलते और भी मजबूत हो गया है। कोई कहीं भी रहे लेकिन साथ जो है वो छूटता नहीं है। मैसेज मसाला मिक्स है ये, आप 9868107070 पर अपने मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं।
1: आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप तवा के थाड़ी रही हो तू आड़े में।
2: आधी रात जब चांद ढले

तो इतना खूबसूरत म्यूजिक है ना सावन में, तो बहुत कुछ याद चला आता है ना बचपन में माँ के, सावन माँ के साथ तो मज़ा ही सावन का कुछ और है। खैर मैं मैसेज लेती हूँ आपके, सड़क पर जाम, ऑफिस की हड़बड़ी और इन सब के बीच अचानक से ठंडी हवा का झोंका। अरे रुकिए, शिकायत मत कीजिए, क्योंकि ये कोई आम शाम नहीं है, तो सावन की धुन है रिम झिम फुहारों के साथ। जब बादलों की गीली चादर धरती पर उतरती है तो ज़िंदगी की भाग दौड़ खुद ब खुद थम जाती है। तो आइए आज रेनबो पर सावन के इस खूबसूरत सफ़र में डूब जाएँ और महसूस करें उस हर एक बूंद को जो सिर्फ प्रकृति की नहीं बल्कि हमारे दिल के बंजर पड़ोरों को भी हरा भरा कर जाती है। क्या बात है। जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बिटिया जो है शिफा अंसारी ने ये मैसेज भेजा है। क्या बात है। ऋतुओं के बदलने का नियम पहले से तय बना है, बारिशों का सावन माह में आना आम तौर पर तय है, मगर इंसान है कि स्वार्थ में उसूलों को ही बदल देता है। अनिल शर्मा लिख रहे हैं सरिता विहार से आपको शुभ संध्या। ये मैसेज है, सावन में मेरी वाइफ नेहा मेरे लिए गरम गरम बेसन के चीले बना रही है। उदित मल्होत्रा द्वारका से लिख रहे हैं, तो आप खाइए। जॉय सीताराम भी कह रहे हैं, हर हर महादेव भी कह रहे हैं। सिस्टर रमा जी नमस्ते, आपके लिए एक मुक्तक भेजा है, कृपया अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रेमचंद प्रेमी लिख रहे हैं, बूंदों की सरगम गिरी मन दीवाना हो गया, पेड़ पंछी गा उठे दिलकश तराना हो गया, धूप गर्मी और तपिश से बेपनाह राह हत मिली, आप आए शो में तो मौसम सुहाना हो गया, मौसम सुहाना हो गया। प्रेमपुर प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से कितना खूबसूरत लिखते हैं, गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ा वन गांव से, सावन में तीज सावन सोमवार नागपंचमी और सबसे स्पेशल रक्षाबंधन। सच कह रहे हैं, रक्षाबंधन के तो क्या कहने, वो आता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत सारे मैसेजेस लेने का मेरा मन है और मैं कोई भी मैसेज ना ऐसे छोड़ना नहीं चाहती। क्यों छोड़ें भाई, आप इतने प्यार से भी तो भेजते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब थोड़े से मैसेजेस आप इस गाने के बाद सुने तो कैसा लगेगा। तो मैं बोलना चाहूँगी 9868107070 पर आप मुझे अपने और भी मैसेजेस भेज सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं सावन से, वो कौन सी याद है जो आपको चली आती है, आपको मजबूर कर देती है कि आप उसमें जाएं, उस सुनहरी याद में जाएं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ ये वाला बहुत प्यारा सा गीत। और जो आपका जिक्र जब आता है ना, रेनबो का जिक्र जब आता है, तो हम थोड़े से मदहोश हो जाते हैं।

0: स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: सागर की

0: गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
1: रेनबो है ये और मैसेज मसाला मिक्स है। मैसेज मसाला मिक्स में चलते चलते ये एक आध मैसेज आकाशवाणी एफएम रेनबो न्यू दिल्ली। मैसेज मसाला मिक्स, रमा जी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक सावन है। मुझे सावन में महा की हरियाली अच्छी लगती है। मुझे सावन महीने में झूला झूलना अच्छा लगता है। रेनबो श्रोता हर्ष मध्य प्रदेश से, थैंक यू सो मच। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, सरिता देवी, शिल्पी रानी, आकाश कुमार, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है। सावन के ऊपर गीत सुने जा रहे हैं। हमें भी गीतों का तो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपने मैसेज किया, अच्छा लग रहा है। सावन का महीना, प्रकृति की हरियाली, रिमझिम बारिश। और ये मैसेज जो आ रहा है सूर्यकांत फ्रॉम वैशाली गाजियाबाद से, और अंशी का भी मैसेज मैंने अभी देखा था, वेलकम कर रही हैं मेरा। और मौसम हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो सावन में भी वो बात नहीं लग रही है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। मनशी क्यों भाई, घर में मन क्यों नहीं लग रहा, घर में तो मन लगना चाहिए। मैम प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ लीजिए। चलिए मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। सावन में बारिश एंड बारिश में भीगना, आई लव वेरी मच। शैलजा फ्रॉम नीम राणा से लिख रही हैं। तो बारिश तो वैसी हो जिसमें भीग जाए। बारिश ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है कि कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बरस रही है और लोग बारिश का सामना कर रहे हैं, बारिश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो ये ज़रूर कहूँगी कि सावन आ गया है, लेकिन अपना जो ध्यान है वो ज़रूर रखिए। पानी है, पानी की तरफ जो है ध्यान से जाएं, कुछ ऐसा ना हो कि जो नहीं होना चाहिए। तो एहतियात पूरी बरसे। मैसेज मसाला मिक्स में हम आपकी मैसेजेस लेते हैं, लेकिन साथ में अपना भी थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। तो यही ऐड करना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए। पानी में जाएं तो बहुत ध्यान से जाना है, और रात के समय और भी ध्यान से निकलना है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आ गई है, और वहाँ पर हम एक दूसरे की सहायता करके ही अपने अपनों को बचा पा रहे हैं, सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूं ही इसी तरह मिलते रहेंगे। मेरे बाद वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम है जो कि लिपिका लेकर आएंगी, और उनके बाद 8 से 9 बजे मैं आपको एक बार फिर से मिलूँगी म्यूज़िक मस्ती में, जहाँ पे हम ऐसा म्यूज़िक चलाएंगे जो कि मस्ती वाला है। और अभी मुझे लगता है कि राखी की बात चली है, मिलना आपका और हमारा बहुत कम होता है। राखी की बात हुई, त्यौहारों की बात हुई, सावन की बात हुई, और सावन का जो अंतिम दिन पूर्णिमा का होता है वो राखी का होता है। तो मैं एक जो है ना, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो जला के बजा के मैं करती हूँ आपको इस प्रोग्राम के लिए टाटा बाय बाय। एंड ये लास्ट मैसेज जाते जाते पढ़ देती हूँ। टुडेज प्रोग्राम ऑन रफीसा, ये वाला तो मेरे लिए मैसेज नहीं है। अच्छा, ये दिन में प्रोग्राम रहा होगा। रफीसा वर ऑसम, थैंक्स। ये रेनबो के लिए प्रोग्राम नहीं है आरती, मैसेज नहीं है आरती जी, विविध भारती के लिए है। गलती से लगता है यहाँ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं चलती हूँ, 8 से 9 में फिर मिलूँगी, और मेरे जस्ट बाद लिपिका आपके साथ रहेंगी। तो राखी के इस गीत को एंजॉय कीजिए।

0: स्थिर रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: So you've heard some electronic dance music, some rock and also some pop songs, all new releases. Time now to check out a country song by none other than country superstar, the biggest selling female artist in the history of country music. I'm talking about Shania Twain. She dropped her latest album titled Little Miss Twain last weekend, 24th of July. And here's a song from that album. It's called Stranger Things.

0: You're tuned to FM Rainbow 102.6 megahertz station of the nation.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Welcome back to the Friday Fiesta, dear listeners. The next new release is dedicated to all lovers of rock music because rock legends The Rolling Stones released their latest album titled Foreign Tongues a fortnight back. It's their 25th British and 27th American studio album. Here's a track from this album. It's titled Jealous Lover.

नमस्कार, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडार प्रणालियों सहित तैरते सारे फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने डीएमके नेता और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के नए मामले में अगले आदेश तक अग्रिम जमानत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हुई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सौरंग में कोयला खादान में मीथेन गैस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्रराज क्रांतिकारी सेनानी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए रेनबो।

मस्ती का, नॉनस्टॉप म्यूजिक मस्ती। और जब म्यूजिक मस्ती यहाँ पर होती है तो होता है एक धमाल, क्योंकि उसमें हम कोशिश करते हैं उन सॉन्ग्स को प्ले करने की जिस पर आप खुश हों, उस पर आप नाचे गाएं, उस पर आप के पाँव उठे। तो ठीक है, मैं भी वही करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रेनबो पर म्यूजिक और मस्ती का धमाल। मैं हूँ रमा, साथ आपके।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: तो म्यूजिक मस्ती है ये रेनबो पर, और म्यूजिक मस्ती जो है इसी तरह चलती रहेगी। आज की म्यूजिक मस्ती कुछ अलग तरह की है, है ना। पाँव उठ रहे हैं ना, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं आप, तो फिर एक और गीत जिस पर आपके पाँव जरूर थिरकेंगे।

0: मिल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती रेनबो पर। तो चलिए म्यूजिक मस्ती के सफर पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: तो म्यूज़िक मस्ती से मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, मुलाकात करूँगी आपसे जल्दी ही अगले महीने, फिर मिल अगले महीने क्या, बस कल ही आ रहा है अगला महीना, तो जल्दी ही मिलने आती हूँ आपसे। विकास कौशिक आ चुके हैं स्टूडियो में और आगे वो रहेंगे आपके साथ, आपकी याद आती रही में। हाँ जी, वो हमें हम ही भर रहे हैं और बहुत तो खूबसूरत सी प्लेलिस्ट वो आपके लिए बना रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात करने जल्दी ही आऊँगी। नमस्ते।
1: बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी। कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया। 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया। ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हुई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। 7,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ब्रॉड पीक पर 10 सदस्यीय पर्वतारोहण दल भरपीले तूफान की चपेट में आया। 4 शव बरामद, 6 अभी भी लापता। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज जूडो में अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह फाइनल में पहुंचे। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

तन्हा तन्हा छोड़ा, ये जो अल्फाज है ना तन्हा तन्हा छोड़ देने के, ये अल्फाज नहीं हैं, ये नश्तर हैं, ये तीर हैं जो सीधे उसके दिल में छुपते हैं जो बस बार बार यही कहता है आपकी याद आती रही। यही इस प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकास, और मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि ये जो मुलाकात है हमारी और आपकी, जो जुम्मे की रात है, ये रात बड़ी अजीब भी है और बड़ी खास भी है। अजीब इसलिए है क्योंकि मुलाकात के बाद भी हम हर बात में बस मुलाकात को नहीं, उस तन्हाई को याद करते रहते हैं, उस तन्हाई के बारे में बातें करते रहते हैं जो हम एक दूसरे के बिना जब बिताते हैं तो हमारा दिल जिस कष्ट को पाता है, जिस दर्द को जीता है, बस वही हमें बार बार याद आता रहता है। और इसीलिए हम बार बार दोहराते रहते हैं कि आपकी याद आती रही। सचमुच आपके बिना मन नहीं लगता, आपके बिना सुना सुना सा लगता है। हर पल ये ख्याल आता है कि अगली मुलाकात का वक्त कब का मुकर्रर हुआ है, ज़रा चेक तो करें। और जब देखते हैं डायरी के पन्ने पलटते हैं, मोबाइल के रिमाइंडर्स चेक करते हैं, तो फिर इस बात की खुशी होती है कि अब मिलेंगे आपसे। और मैंने कहा ना कि ये रात अजीब इसलिए थी और खुशी किस लिए है, खुशनुमा बात ये है कि अब ये रात, ये मुलाकात हमारी है। और रात हमारी है तो कुछ खास होगी, ये मैं भी कह रहा हूँ, चित्रा जी भी कह रही हैं, साथ में स्वानंद साहब भी। सुनिए जरा।

अंधेरा भले रूठ जाए लेकिन हम कैसे रूठ सकते हैं, हम तो आपके अपने हैं, आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन हैं जिसे आप कहते हैं आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आपके साथ विकास। और आप जानते हैं कि आकाशवाणी रेनबो को आप कहाँ सुनते हैं? नहीं जानते, नहीं याद रहता तो याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। आप इसे सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो को दिल्ली NCR में, हमारा पता है बिल्कुल फिक्स यानी 102.6। और देश के अलग अलग हिस्सों में हम आपको मिलते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, और साथ ही देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें कहीं भी कैसे भी सुन सकते हैं। तो जहां भी जिस भी माध्यम से जिस भी फ्रीक्वेंसी पर आप हमें सुन रहे हैं आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। मेरा नाम है विकास और मैं आपको बता दूँ कि एक बात दिल से यूँ निकली है कि अपने जहन से उलझनों का गम निकाल दे, अपने जहन से उलझनों का गम निकाल दे, रह रह के मोहब्बत के सारे भ्रम निकाल दे, और उसे एक शख्स को खोने के बाद अब क्या ही रह गया, उसे एक शख्स को खोने के बाद अब क्या ही रह गया, अब कोई दुख नहीं जो मेरा गम निकाल दे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई जब चला जाता है किसी भी हालात में जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए और कहीं भी जाए, जब वो हमसे दूर हो जाता है तो दिल बस यही कहता है कि तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है।

इस गाने की सबसे पसंदीदा लाइन मेरी यही है कि जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती हैं ये पागल निगाहें, आपकी भी निगाहें, इनफैक्ट आपके कान,

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

यश चोपड़ा का जादू है ये फिल्म लम्हे और लता जी की आवाज़ साथ में, और कितनी प्यारी लाइन है ना, दो प्रेमी आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, एक दूसरे में खोए हुए, एक दूसरे की मोहब्बत से पूरी तरह भीगे हुए, है ना। लेकिन सोचिए कि इसके बाद जुदाई में पतझड़ का सा मौसम आ जाए फिर क्या करें, है ना। अगर हम एक प्रेमी की जगह हों तो हम तो बस यही कहेंगे बरसों बाद भी कि जो निदा साहब कह गए हैं कि बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। एक बहुत प्यारा गाना मैंने आपके लिए ये लगा दिया है। गाना क्या है ये, इसको सुनते रहे ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जान मेरी जा रही सनम। करेक्ट गेस किया आपने, एकदम करेक्ट गेस किया है। लकी, नो टाइम फॉर लव से।

0: जान तो चली जाती है जब आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी प्यारी बातें जो आपको लिखकर भेजते हैं हमें, वो हम तक पहुंच जाती हैं, है ना। और सचमुच दिल जीत लेती है आपकी मोहब्बत। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब आपसे हम नहीं मिलते हैं, जब आपकी मोहब्बत का ओवरडोज हमको नहीं मिलता है, तब दिल बार बार बस यही कहता है, आपकी याद आती रही। यही इस प्रोग्राम का नाम, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ विकास, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे मैसेजेस हमें आपके मिल रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमें सलीम अख्तर साहब रेशमा बेगम अलीगढ़ से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आदाब कह रहे हैं। राजेश बल्ला साहब कह रहे हैं शुभ रात्रि, रात बाकी है, बात बाकी है जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी बाकी है। पंकज जी अमरावती से लिख रहे हैं गुड इवनिंग, और आपकी याद आती रही, प्रोग्राम बहुत मज़ा आ रहा है, गाने बहुत पसंद आ रहे हैं उनको। इसी तरह हमें और किस किस ने लिखा आपको बता देते हैं। गुन्नौर मोहल्ला बगिया से हमें वीरपाल मिस्त्री नासिर अली सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। फारूक अली खान साहब से हमें को सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, और बहुत बहुत उनको प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। और हमारे कई सारे गुमनाम दोस्त भी हमें बहुत सुन रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आप अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, अपनी बातें हम तक पहुँचाते रहिएगा, और हम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे बहुत सारे पसंदीदा आपके गाने। लेकिन फिलहाल एक छोटू सा ब्रेक, कहीं जाने का नहीं, सुनते रहने का आकाशवाणी रेनबो। विकास आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

क्या कमाल का थॉट है, 100 ग्राम सी जिंदगी है लेकिन लाखों टनों पहले ख्वाहिशों का बोझ और उसके बाद ना उम्मीदी का, फिर कहीं आता है पछतावे का बोझ, है ना। लेकिन इन सारी बोझों को अगर हम कंधों से उतार दें अपने अपने, तो बस इतना ही ज़रूरी महसूस होगा कि हम किसी से दिल से कह सकें कि मैं वक्त बन जाऊं, तुम बन जाना कोई लम्हा।

मैं वक्त बन जाऊं, तुम बन जाना कोई लम्हा, मैं तुझ में गुजर जाऊं और तुम मुझ में गुजर जाना। और अगर ऐसा वक्त ना मिले तो फिर बस यही कहिए अपने चाहने वाले से कि आपकी याद आती रही मेरे हमसफर।

मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक बात आपको बतानी है। बात यह है कि इश्क जितना था जहां में सब तुम्हारे पास है, मेरे दिल के चोर हो तुम। क्या तुम्हें एहसास है? एहसास नहीं है तो एहसास दिलाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम आपको बस ये बताने आए हैं कि अब मुलाकात का वक्त यहीं खत्म इस प्रोग्राम में, लेकिन रात 11 बजे साथ में मिलकर सजाएंगे रंग महफिल। तब तक ये याद रखिए कि तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।

0: You are tuned to FM Rainbow and you are listening to our Friday Night Party Special playlist in the program, The Weekender. And I hope you all are leaving all the week's worries behind and letting the rhythm take over. Time now for a break. Don't go away. We'll be right back.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है. आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
4: ठीक है.
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए

0: नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। रात के 11:32 हुए हैं, लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई, राहत बचाव कार्यों में तेजी। आकाशवाणी आइजोल ने अपनी हीरक जयंती मनाई। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। ये थे आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार। लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी रेनबो का अगला कार्यक्रम।

बिल्कुल इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए जैसे हम आपसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ, उसी अंदाज के साथ, उसी गहरी मोहब्बत के साथ और उसी पुरानी शिद्दत के साथ कि आपको आकर कहें कि आपके साथ ये मुलाकात बहुत खास है, क्योंकि ये है आकाशवाणी रेनबो की रंग महफिल। जी हाँ, रात के 11:09 हो चुके हैं, 30 सेकेंड भी उसमें जुड़ चुके हैं और इस वक्त मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल में। मेरा नाम विकास है और मेरा ये भरोसा है आपको कि आपके साथ की ये मुलाकात, ये रंग महफिल जहाँ तमाम गज़लों के अलग अलग रंग, अलग अलग माहौल में कहे जाने वाली कुछ खास बातें हम आपके साथ करेंगे। बस आप रहिएगा हमारे साथ बरकरार। चंदन दास ने अपनी बात आपको कही, लेकिन उसके बाद अब भूपेंद्र जी की बारी है। बड़ी खूबसूरत गज़ल ढूंढ कर लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? और आपको वैसे भी कहना चाहता हूँ कि नज़रें उठा के शायद तुम्हें ना देख सकूँ, तुम्हें मैं देख रहा हूँ नज़रें उठाए बगैर। भूपेंद्र जी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं।

क्या खूब है ये गजल। गुलजार साहब लिखते हैं कि दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज कुछ देर थमी सी है, कौन पथरा गया है आंखों में, बर्फ पलकों पे क्यों जमी सी है। और कमाल की बात यह है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। लेकिन यह वक्त है कि इस वक्त को हम निकलने से पहले अपने हाथ से, अपने जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है ना, वक्त भी ऐसे निकल जाता है। इसलिए जो लम्हे हमें मिलते हैं उन लम्हों को जाने से पहले जी लेना चाहिए, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान जीने की नहीं बल्कि जीने की तैयारियों में लगा रहता है। कल को कुछ ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, वैसा कुछ कर देंगे, बस तैयारियां तैयारियां तैयारियां। लेकिन जो वक्त हाथ में है, कभी जीने की कोशिश की है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जितनी सांसें हमें मिल रही हैं, हो सकता है कि दुनिया में तमाम ऐसे लोग हों जो इनसे भी महरूम हों। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले की जो रहमत है, उसके शुक्रगुजार बनिए, ना कि रो रो कर घर भर दीजिए, है ना। मिताली जी भी कुछ कह रही हैं, सुनिए, बहुत प्यारी बात है सिर्फ आपके लिए, यही रंगे महफिल में। स्टे ट्यून्ड।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: FM Rainbow 102.6
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: FM Rainbow 102.6.

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: और मैं कहता हूं कि ये फसाना सिर्फ निगाहों से नहीं, अल्फाजों से भी बयां होता है। और उन्हीं बड़ी नफासत से कहे गए अल्फाजों का नाम है गज़ल। और उस गज़ल को अगर गज़ल की शक्ल में ना भी देखें तब भी बड़ी नफासत के साथ कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। और उन्हीं बातों में से एक ये गाना, इजाज़त का गाना। इस फिल्म का बस नाम भर ले ना जब हो जाता है तो फिर समझिए कि पूरी ऐसी प्लेलिस्ट सामने खुलती है ना, इसमें एक एक जो नगीना है बेमिसाल है। और आज मेरा वो फेवरेट जो जब भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं ज़रूर आपके लिए बजाता हूँ, है ना। आशा जी आरडी मतलब पंचम दा का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में गुलजार, उफ़ ज़बरदस्त। रंगी महफिल में ये बड़ा खुशनुमा सा रंग जिसमें गम तो है लेकिन उसका अपना मजा है। आपके लिए मेरा कुछ सामान

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। क्यों ये कहता है दिल? इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। 31 दिसंबर की रात उमंग 2026।

गजल कह रही है याद नहीं याद नहीं याद नहीं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि चाहे कुछ भी भूल जाएं पर ये याद रखें कि ये आकाशवाणी का रेनबो है जहां इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। अब वक्त कह रहा है कि आपसे फिदा ली जाए, आपसे अगली मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया जाए। वक्त जब पता लगेगा हमें आपसे मुलाकात का तो ज़रूर आप तक खबर पहुंच जाएगी। एक दिल से दिल तक का रिश्ता है हमारा, लेकिन बस इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अपने अपने हौसले अपनी अपनी तलब की बात है, अपने अपने हौसले अपनी अपनी तलब की बात है। हमने तुम्हें चुन लिया, सारा जहां रहने दिया। अगली मुलाकात होगी और बहुत खूबसूरत, इस उम्मीद के साथ कि आप वो हैं जिसे लोग कहते हैं चौदहवीं का चांद। ठीक है, इस बहुत खूबसूरत नगमे के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे और ऐसे ही ता उम्र मुस्कुराहट को जाने मत दीजिएगा। शब खैर, बाय बाय।

आकाशवाणी रिनबू पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई।

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। राहत बचाव कार्यों में तेजी। आकाशवाणी आइजोल ने अपनी हीरक जयंती मनाई। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बी लालछनजोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने आज 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या बिश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए, वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब करते हैं हम अपने श्रोताओं का स्वागत। कार्यक्रम का नाम है जीरो आर शो। तो आइए सुनते हैं कुछ अच्छे गीत जो इस रात के माहौल को थोड़ा बेहतर बना दें।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे है। प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर प्रदर्शन की हाल की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वे इस दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल की हुए अपशब्दों के लिए बच्चों को माफ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई, राहत बचाव कार्यों में तेजी।

राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बधाई दी। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने आज 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए, वहीं अवंशिका और तान्या ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। स्वागत है आपका सुहानी रात कार्यक्रम में।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों, जो साथी पहले से

इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं। इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, अपने सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बधाई दी। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए, वहीं अवंशिका और तान्या ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। सुनवाते हैं आपको कुछ ऐसे नगमे जो भुलाए ना बने।

होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर।

0: बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडोलोविच कल से 5 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत जबकि एक अन्य घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं यामिनी मौर्य ने जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या 20 हुई जिनमें 5 स्वर्ण 11 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दी। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। इसके अलावा 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडलोविच कल से 5 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत जबकि एक अन्य घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की निंदा की। इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं यामिनी मौर्य ने जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। सारे गामा में आपका स्वागत है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और अब प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले छात्रों को माफ किया। सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थाई रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इसके अलावा 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओल्डोविच कल से 4 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत जबकि एक अन्य घायल। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। और खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। यशवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं तेजस्विन शंकर ने डेकल्थॉन में कांस्य जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। भारत के पदकों की संख्या अब 23 हो गई है जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात। आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।